सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Beyond the Barricade is at St George's Hall on June 19th. Also in Bradford, Sing Along of the Greatest Showman comes to St George's Hall on the 20th of June. Over in Calderdale, The Kooks are live at the Peace Hall in Halifax on the 19th of June, and Belle and Sebastian perform there on the 21st of June. In Leeds, Lily Allen is at the First Direct Bank Arena on 21st of June. In Manchester, the B-52s and Devo bring their Cosmic De-Evolution Tour to the AO Arena on 21st of June. Over in East Lancashire, Luther Live is at Burnley Mechanics on the 19th of June. In Derby, Little Shop of Horrors continues at Derby Theatre until the 20th of June. In Milton Keynes, The Karate Kid the Musical is at Milton Keynes Theatre from the 16th to the 20th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
4: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
2: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Beyond the Barricade is at St George's Hall on June 19th. Also in Bradford, Sing Along of the Greatest Showman comes to St George's Hall on the 20th of June. Over in Calderdale, The Kooks are live at the Peace Hall in Halifax on the 19th of June, and Belle and Sebastian perform there on the 21st of June. In Leeds, Lily Allen is at the First Direct Bank Arena on 21st of June. In Manchester, the B-52s and Devo bring their Cosmic De-Evolution Tour to the AO Arena on 21st of June. Over in East Lancashire, Luther Live is at Burnley Mechanics on the 19th of June. In Derby, Little Shop of Horrors continues at Derby Theatre until the 20th of June. In Milton Keynes, The Karate Kid the Musical is at Milton Keynes Theatre from the 16th to the 20th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303 जीरो।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टेरियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। आप 100.6 एफएम पर भी सुन सकते हैं और डीएपी पे सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं और चंद दिनों के बाद आप डाबी शहर में भी सुन पाएंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। अब से लेकर 1 बजे तक आपकी डेडिकेशन होगी। 1 और 2 के दरमियान लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो दोस्तों अब कमर्शियल का टाइम हो चुका है और कमर्शियल के बाद आप छोटी सी इवेंट्स डायरी सुनेंगे, उसके बाद आप हिट ऑफ द आवर सुनेंगे। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद छोटी सी इवेंट्स डायरी और उसके बाद आप सुनेंगे एक क्या कहते हैं सदाबहार एक प्यारी सी कवाली। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद जनाब बहुत ही प्यारी सी कवाली हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए।
1: My favorite radio station, Sunrise Radio.
2: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move.

अभी आप अदनान समी की आवाज में दोस्तों बहुत ही प्यारा सा कलाम सुन रहे थे, और चलते हैं अब गुरदास मान की आवाज में ये प्यारा सा कलाम आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने गुरदास मान और साथियों की आवाजों में प्यारी सी धमाल सुनी और महबूब अलाई साहब आपने फ़ोन किया, कहा कि आपको ये धमाल बहुत पसंद आई तो जनाब आपके नाम की। उसके बाद हीरा खान साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका आपके नाम की। और उसके बाद वाजिद भाई एडर्सफील्ड से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी आपके नाम भी की। तो चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:48, यानी कि 11:48। तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत सुनेंगे आप, सदाबहार गीत, और वो जनाब नदीम मंसूर साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। आपके नाम भी करेंगे, हीरा खान साहब, महबूब अलाई साहब, वाजिद भाई और जनाब दीगर तमाम दोस्तों के नाम, और मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, हमैर, बाबर और इफराज आपके नाम, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम। तो चलिए, और साइमा जी आपके नाम, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करते हैं।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
4: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
3: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
4: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
3: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.

जी दोस्तों, अभी आपने नाजिया हसन की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं अगले गीत की जानेब। और गुलाम भाई, वेलकम बैक फ्रॉम इंडिया जनाब, सत बिस्मिल्ला, वेलकम बैक जनाब। आपके नाम ये गीत गुलाम भाई, और आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम और नवीद भाई के नाम, कारी जुल्फी साहब आपके नाम भी करते हैं, महबूब इलाही साहब आपके नाम भी करते हैं, और नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं जनाब और यही हिस्सा जो होता है ये डेडिकेशन का होता है क्योंकि इसके बाद जो हिस्सा होगा यानी कि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा एक और दो के दरमियान वो लाइव कॉल्स का होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो अगर कोई गीत सुनना चाहें या किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहें तो जनाब इसी आवर में ज़रूर आइएगा और हमें बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं हिट ऑफ द आवर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा और साथ साथ रहिएगा दो बजे तक मेरा और आपका साथ है। तो चलते हैं एक हिट ऑफ द आवर सुनते हैं मस्ती भरा गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद बेलव्यू रेजिडेंसेस। डिस्कवर स्टनिंग 4, 6 एंड इवन 8 बेडरूम होम्स। कॉल 0127-428-8252।
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक की आवाज में एक हिट ऑफ द आवर सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:13, यानी कि 13 मिनट्स पास 12। तो नसरीन साहब

फोन करने का शुक्रिया आपके नाम करते हैं गीत गुज़श्ता आपकी बर्थडे थी और आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहते हैं और ये गाना आपके लिए जो कमर्शियल के बाद होगा उसके बाद सोनिया बहन आपने भी बर्मिंघम से फ़ोन किया शुक्रिया आपका भी आपके नाम भी करेंगे और उसके बाद तारिक जुल्फी साहब आपने भी फ़ोन किया शुक्रिया फ़ोन करने का आप जनाब सुनना चाहते हैं अपने जनाब दोस्तों के लिए जिनमें जनाब मलिक मोहम्मद इसहाक साहब और हीरा खान साहब उनके लिए सुनना चाहते हैं और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत और उसके बाद आपसे मिलते हैं।

दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत को सुन के अयूब चौहान साहब आपने फोन किया और कहा कि आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो आपके नाम किया जनाब। और साथ में आपने कहा कि अगले आवर में आएंगे और धूम धड़के के साथ आएंगे। अच्छा जी जनाब, आपका इंतजार रहेगा। और अब जनाब गुज़श्ता रोज मरियम की बर्थडे थी और मरियम को हैप्पी बर्थडे कहते हैं सबसे पहले, तो हम कहते हैं मरियम आपको सालगिरह की बिलेटेड बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपको आपकी प्यारी बहन महक जो हैं महक तारिक वो आपको सालगिरह की मुबारकबाद देती हैं, और आपके भाई हैं उज़ैर तारिक वो भी आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और उसके बाद आप की आंटीज़ हैं फरा नहीं मदर जाते हैं आपकी ग्रांडमा है नानो है फरा दीबा, उनकी जानिब से आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद हो, और फिर आपकी अम्मी जान मिसबा अयूब की तरफ से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और उसके बाद आपकी आंटीज़ हैं रिमशा अयूब फरवा अयूब, और आपके अंकल हैं यासिर अयूब, और आपकी आंटी हैं सिमरा यासिर, और स्पेशली आपको हैप्पी बर्थडे कहती हैं उमे हनिया, तो जनाब आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हैं, और आपको सादिया जी भी मुबारकबाद देती हैं, और सभी आपको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत वाली दे, किसी का मोहताज ना करे, और आप इसी तरह हर साल खुशी से जनाब आप सालगिरह मनाती रहें, और सभी आपको मुबारकबाद देते रहें, हम भी आपको मुबारकबाद देते रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे, और ये गीत आपके नाम करते हैं जनाब।

0: जी दोस्तों अभी आपने उदित नारायण और जनाब श्री अगुशाल की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और एक बार फिर मरियम बेटा आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों इस वक्त वक्त जो है मैं बता रहा है कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद वाजिद भाई एडसवीर से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। और इसी गीत को नसरीन साहबा शुक्रिया दोबारा फ़ोन करने का, आपके नाम करते हैं। और अब इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे इकरा जी आपकी जानिब से, नजमा इफ़त नाजिया हमीदा रबीना बुशरा ताजीम जायदा और साइमा के लिए भी, और प्यारी बहना सादिया जी आजरा जी आपके नाम भी करेंगे, मुना जी आपके नाम भी करेंगे।
1: 24 hours a day. Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
2: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
1: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
2: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
1: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield, and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और आबिद भाई, फोन करने का शुक्रिया जनाब। आपके नाम करेंगे गीत, आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम करेंगे, उसके बाद अब्दुल कयूम साहब राइजिंग हॉल से आपने फोन किया, शुक्रिया आपका फोन करने का। सभी सुनने वालों को आपने सलाम अर्ज किया और एक प्यारा सा गीत आपके नाम करेंगे, और आपके साथ साथ गुलाम भाई आपकी जन्म से आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे, और नवीद भाई आपके नाम भी। और जनाब, इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सुन रहे हैं। और हमारे प्यारे दोस्त जनाब चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, वो भी फ़ोन कर रहे हैं। जनाब शुक्रिया चौधरी मनीर साहब फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी ये गाना अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों को पसंद आया होगा। और सोनिया बहन, एक बार फिर आपने फ़ोन किया, शुक्रिया, अच्छा लगा अपनी बहन से बात करके। और कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत होगा, अभी माइंड नहीं बना कौन सा गीत होगा, तो अगर दुखाना हुआ तो आपके नाम, तो अगर ना हुआ तो आप बस सुनिए और इन्जॉय कीजिएगा उसको। और अब जनाब वक्त कमर्शियल का भी हो चुका है, और कमर्शियल के बाद ही कोई जो है वो प्यारा सा गीत पेश करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियों के मुताबिक टाइम हुआ है 12:45, यानी कि 12:45। तो चलते हैं जनाब, अब गाना जो है ना वो अब क्या है कि कमर्शियल छोटी सी है, क्या माइंड बनाऊँ, वही लगा देता हूँ जो अमूमन ज़्यादा मैं प्रोग्राम में गाना लगाता हूँ, वही लगा देता हूँ। और सोनिया बहन, आपके नाम, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, आपके नाम, आबिद भाई आपके नाम, और आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम, और उसके बाद जनाब अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले आपके नाम, वाजिद भाई आपके नाम, तारिक जुल्फी साहब आपके नाम, हीरा खान साहब आपके नाम, अयूब चौहान साहब आपके नाम, और नसरीन साहब आपके नाम, और उसके बाद प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, ग़ुलाम भाई आपके नाम, और आपकी जन्म से आपके पूरे स्टाफ के नाम, और नवीद भाई के नाम, नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी, महबूब लाई साहब आपके नाम भी, और सफीउल्ला भाई आपके नाम भी, और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। जी हाँ, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
2: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नकैनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना। कानस लाने ना, 1 पौंड, छापा दे बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 4 8 9 3 5।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard?

पत्थर के सनम फिल्म से लिया हुआ गीत लता जी और मुकेश की प्यारी सी आवाजों में दोस्तों आप सभी सुनने वालों के लिए पेश की। तो अब जनाब चलते हैं अगले गीत की जानिब। ये गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा। जहां कहीं भी हैं आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं तो आपके नाम करेंगे ये गीत जनाब उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। और याद रखिए दोस्तों इस आवर का ये आखिरी गीत है। जब अगले आवर में प्रोग्राम के आखिरी आवर में आएंगे तो उस वक्त लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। उसमें कोई डेडिकेशन नहीं होगी। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं दो प्यार भरी आवाजों में ये प्यारा सा गीत प्यारी सी शायरी के साथ।

0: दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। और इस आवर में कोई डेडिकेशन नहीं होगी जनाब, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स होंगी जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। दो प्यारी सी शख्सियत हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ गई हैं, ब्रेडफोर्ड से नदीम मंसूर साहब और जनाब मैनचेस्टर से अयूब चौहान साहब। तो दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:12, यानी कि 12 मिनट्स पास्ट 1। और जैसा कि मैंने कहा कि लाइव कॉल का सिलसिला होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, नदीम मंसूर साहब ब्रेडफोर्ड से और मैनचेस्टर से अयूब चौहान साहब। तो छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसकी जानिब चलते हैं, और उसके बाद जनाब फिर इन दो अस्सियों से मिलेंगे और दीगर दोस्त भी आएंगे, उन्हें भी सुनेंगे।
2: 24 hours a day. 103.2. This is Sunrise Radio.
3: Got the greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
4: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
6: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
7: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
6: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
7: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's

0: www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
1: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect and succeed.
2: Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.
3: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि लाइव कॉल्स का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, ब्रेडफोर्ड से नदीम मंसूर साहब और मैनचेस्टर से अयूब चौहान साहब। तो तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी एन सत बिस्मिल्लाह कहेंगे नदीम मंसूर साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
4: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं? ठीक
3: है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र,
3: अल्लाह हमेशा आप पे करम रखे सर। और मदद चाहते हैं, आप काम पे हैं और काफी देर से आप होल्ड पे भी थे, तो आप वक्त निकालते हैं हम सब दोस्तों के लिए, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
4: जज़ाकअल्लाह। चलिए, ये चंद अशआर हैं, इनको मैंने तरन्नुम में पेश कर रहा हूँ।
3: अच्छा जी
4: जी जी। और मेरे प्यारे दोस्त हैं अब्दुल हमीद खान साहब, उनके लिए और सबके लिए और आपके लिए।
3: थैंक यू सर।

अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं, जो अच्छा सोच सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं, जो अच्छा सोच सकते हैं, तरन्नुम घोल सकते हैं, मोहब्बत बोल सकते हैं, तब तुम ओढ़ सकते

जमाना छोड़ सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं।

निकलते हैं तो सहराओं में रुकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। किसी

किसी को कम नहीं कहते, सफर में दम नहीं लेते, ज़मीं आबाद करते हैं, फलक को खोज सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं, कोई जो ढूंढना चाहे उन्हें

वो खुद को झांक कर देखे, बड़ी सच्चाई से सोचे, बहुत अच्छाई से सोचे, बड़ी सच्चाई से सोचे, बहुत अच्छाई से सोचे, तो उन लोगों में आएगा।

है जो तूफान मोड़ सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच

0: वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है। शायरी को आपने ऐसे तरन्नम में गाया, लगता है किसी फिल्म का गाना सुन रहे हैं। और वाकई सच्ची बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी वजह से दुनिया कायम है और ये प्यार मोहब्बत कायम है। और बहुत अच्छी बात, सबक वाली शायरी थी और बहुत प्यारी स्वीट आवाज़ में आपने इसको मजीद निखार दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आप को अल्लाह सलामत रखे। आप काम पे होते हैं और ब्रेक होती है खाने के लिए और आप हम सब का दिल बहलाने के लिए आते हैं, अल्लाह आपको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे नदीम मंसूर साहब, ढेर सारी तालियां जनाब इनके लिए। और क्या शायरी थी, और ये गाना नहीं था लेकिन इन्होंने तरन्नम में शायरी को पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और आप दोस्तों चलते हैं जनाब मैनचेस्टर में, जहां हमारे प्यारे दोस्त हैं जनाब अपने अय्यूब चौहान साहब इस लाइन पे मौजूद हैं, उनके लिए ढेर सारी तालियां जनाब। अय्यूब चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक ठाक हूँ। ये दुनिया, आप ठीक कह रहे हैं कि मोहब्बत करने वाले लोगों की वजह से कायम है, एक उनमें से एक आप भी है ना।
0: थैंक यू सर, ये आपकी ज़रा नवाजी है। आप अगर ऐसा समझते हैं,
1: अगर आप मोहब्बत ना करें तो हम क्यों आपके आपसे बातें करने को आए, तो वरना नहीं तो खामोशी से सुनते रहे ना आपको। ये मोहब्बत है आपकी, तो आप ठीक है हमें लाती है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत प्यारी बात की। लेकिन क्या है कि हम साथ में रोज़ी कमा रहे हैं और फिर जिनकी वजह से रोज़ी कमा रहे हैं उनको इज्जत ना दें तो फिर जनाब मज़ा तो नहीं है ना।
1: वाह वाह, क्या क्या
0: आप दोस्तों की वजह से तो हमारी रोज़ी रोटी लगी हुई है।
1: सुबह क्या खा के आए?
0: जैसे नॉर्मली ब्रेकफास्ट करता हूँ, क्यों मैं आगे अच्छी बातें नहीं करता, मीठी बातें नहीं करता?
1: वैसे पहले भी अच्छी बातें करते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं,
0: पता नहीं। फिर मैं तो अमूमन ऐसे ही बातें करता हूं।
1: एक तो नदीम मंसूर साहब ने इतना जबरदस्त गाना गाया, उससे पहले जो आपने गाना गाया, बस क्या पूछते हैं उसने।
0: मैंने गाया
1: नहीं, प्ले किया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा मैंने गाया।
1: मांग रखा था जब खुदा तारे चांदी, क्या उस क्या शायरी है इस गाने में और क्या म्यूजिक है।
0: बहुत अच्छा।
1: बस ये गाना सुन के मेरे कान खड़े हो गए, दिल बाग बाग हो गया।
0: अच्छा,
1: तो
0: भाभी सामने होंगी ना जब ये गाना, भाभी सामने होंगी ना जब ये गाना सुन रहे थे, इसलिए कान खड़े तो होते ही है।
1: नहीं, मैं अकेला ही होता हूँ इस वक्त।
0: तो फिर कान क्यों खड़े हो गए आपके?
1: बस वो गाने की शायरी इतनी थी लेकिन।
0: अच्छा अच्छा,
1: बात ये है कि वफा जो है ना किस्मत से मिलती है।
0: हाँ वो तो है, वो तो है।
1: अगर
0: वो उसमें तो कोई शक नहीं, खरीदने पे हो तो आपने तो अंबार लगाया हुआ हो।
1: हाँ ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन
0: अल्लाह ने आपको हिसाब में रखा
1: जी।
0: हिसाब में रखा कि भाभी तक ही महदूद रहे।
1: एक आदमी, एक लड़का था ना।
0: अच्छा,
1: नहीं नाम इतना नहीं लूंगा।
0: अच्छा।
1: तो माँ को कह रहा था, माँ अगर मैं पुलिस इंस्पेक्टर होता साल से पहले तुझे पकड़ता।
0: माँ को पकड़ता, क्या बात है।
1: तो माँ बोली, बेटा इसलिए तो खुदा ने अपनी जगह पर ही रखा।
0: सही।
1: बात कुछ और है, मैं क्या, चलो ठीक है छोड़ो, रहने दे उसको, मैं शायरी सुना देता
0: हूं। हां सही है, बातें आप तो बहुत अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है
1: जी। तो इस तरह कि मैं फकत इस जुर्म में दुनिया में रुसवा हो गया।
0: ओहो,
1: मैंने जिस चेहरे को देखा तेरे जैसा हो गया।
0: वाह क्या बात,
1: चांद में कैसे नजर आए तेरी सूरत मुझे।
0: हाय हाय,
1: आंधियों से आसमान का रंग मैला हो गया।
0: वाह वाह क्या बात है,
1: एक में ही रोशनी की ख्वाब को तरसा नहीं।
0: हाँ।
1: आज तो सूरज भी जब निकला तो अंधा हो गया।
0: वाह जी वाह क्या बात है,
1: ये भी शायद जिंदगी का एक अदा है दोस्तों।
0: हाँ।
1: जिसको साथी मिल गया और जिसको साथी मिल गया वो और तनहा हो गया।
0: वाह जी वाह, क्या और तनहा हो गया
1: जी। एक पत्थर जिंदगी ने तक कर मारा मुझे, एक पत्थर जिंदगी ने तक कर मारा मुझे, चोट वो खाई के सारा जिस्म दोहरा हो गया।
0: ओए होए क्या बात है।
1: मिल गया मिट्टी मिट्टी में जब अफजल तो ये आई सदा, घर गिर गई दीवार और साया अकेला हो गया।
0: वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब।
1: ये तो शायरी थी जी।
0: हाँ जी,
1: तो अब लतीफे की तरफ चलता हूँ। इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ एक बच्चे ने अपने वाले से पूछा,
0: हाँ जी
1: अब्बा जान दरिया नील कहाँ है।
0: अच्छा जी।
1: बाप ने अखबार पढ़ते हुए जवाब दिया, बेटा अपनी अम्मी से मालूम करो, वो चीजें इधर उधर रख देती है।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात है जनाब, क्या बात, क्या बात।
1: बेटा तुम ईद के अलावा किस दिन ज्यादा खुश होते हो।
0: हाँ।
1: बेटा जिस दिन मास्टर साहब बीमार होते हैं।
0: क्या बात, बड़ा लाइक बच्चा।
1: तो ये तो शायरी थी लतीफे थे। तो हमारी तरफ से चौधरी फरियाज साहब को मोहब्बत भरा सलाम,
0: बिल्कुल,
1: चौधरी मुजफ्फर साहब को और भी जितनी आपकी सनराइज फैमिली है, लिसनर स्टाफ सब को हमारी तरफ से प्यार।
0: आपको आपको जनाब सलाम भेजा हुआ है वाजिद भाई ने, चौधरी फरियाज साहब को और आपको स्पेशली
1: जी शुक्रिया उनका। मैं उनका सलाम अपने दिल के खाने में डाल देता हूँ, डायरी जहाँ पर है मेरी उसमें लिख देता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल लिख दें जनाब।
1: ठीक है जी,
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।
1: जिंदगी ने वफा की थी इतवार को,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। ढेर सारी तालियां जनाब यूं चौहान साहब के लिए, और तालियों की गूंज में साथ में वक्त हुआ जाता है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं महबूब इलाही साहब, उन्हें सुनेंगे जनाब।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
4: गलियां घुमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा ज्वेलर ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा ज्वेलर्स ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब महबूब अल्लाही साहब और साथ में जुड़े हुए हैं चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान से। तो तालियों की गूंज में खुश आमदीद वेलकम जी हम कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे महबूब अल्लाही साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी हजूर कैसे हैं जनाब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अल्लाह का, जितना भी अदा करें उतना ही कम है।
0: बिल्कुल सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है।
1: अब आप पिछले प्रोग्राम में सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं रही ना पहले, तो अब तो
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है
1: जी। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्त सेहत दे।
0: आमीन।
1: अभी यूब साहब की शायरी सुनी और लतीफे भी बड़े जबरदस्त सुनाते हैं।
0: क्या बात क्या बात
1: माशाल्लाह जी। बाकी कलाम है थोड़ा सा छोटा सा पेश करते हैं।
0: चौधरी
1: मुजफ्फर है, तारिक गुलफिंग है, चौधरी फरियाद, चौधरी टुकसार है, अयूब जहान साहब है, जवेद मीर है, भाई सफीउल्लाह साहब है, अतीका जी है, हमीदा जी है, और आप सभी के नाम करना चाहेंगे जितने सामने। शायर लिखता है, कभी इस तरह मेरे हम सफर, कभी इस तरह मेरे हम सफर, सभी चाहते मेरे नाम कर।
0: बहुत खूब।
1: कभी इस तरह मेरे हम सफर, सभी चाहते मेरे नाम कर, अगर हो सके तो कभी कहीं, अगर हो सके तो कभी कहीं मेरा नाम भी कोई शाम कर।
0: वाह वाह क्या बात।
1: अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर, मेरे दिल के साए में आ जरा, मेरे दिल के साए में आ जरा, मेरी धड़कनों में क्याम कर।
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: थैंक यू। मेरे दिल के साए में आ जरा, मेरी धड़कनों में क्याम कर। ये जो मेरे लफ्जों के फूल हैं, ये जो मेरे लफ्जों के फूल हैं, तेरे रास्ते की धूल हैं।
0: ओहो।
1: ये जो मेरे लफ्जों के फूल हैं, तेरे रास्ते की धूल हैं, कभी इनसे सुन मेरी दास्तां, कभी इनसे सुन मेरी दास्तां, कभी इनके साथ कलाम कर।
0: वाह वाह बहुत खूब।
1: कभी इनसे सुन मेरी दास्तां, कभी इनके साथ कलाम कर, कभी इस तरह मेरे हम सफर, सभी चाहते मेरे नाम कर।
0: ओए हो हो।
1: कभी इस तरह मेरे हम सफर, सभी चाहते मेरे नाम कर, अगर हो सके तो कभी कहीं, अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कुछ शाम कर।
0: वाह वाह वाह
1: अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर।
0: वाह वाह वाह क्या बात।
1: आज के लिए इतना ही था।
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, आप आए प्रोग्राम में, शमूलियत की, इतनी प्यारी गजल आपने सुनाई। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह
1: हाफिज़।
0: ये थे जनाब महबूब अल्लाही साहब, ढेर सारी तालियों उनके लिए जनाब। और अब जनाब चलते हैं पाकिस्तान कश्मीर जरूरी में, जहां जनाब हमारे प्यारे दोस्त जनाब चौधरी फरियाद साहब इस लाइन पे मौजूद हैं। एक बार फिर उनके लिए ढेर सारी तालियां जनाब। चौधरी साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह करा जी करा,
0: बिस्मिल्लाह करा। सोने हो, मखना मलाई दे पेड़े हो, ठीक हो?
2: ये तुसानिया दुआवां, तुसान सुनाओ ठीक हो?
0: आसी अल्हम्दुलिल्लाह, तुहाडियां दुआवां नाल अल्लाह दा बड़ा करम है जनाब, ठीक ठाक हां। ते टॉप अप करा लेंदे हो किधरों ना किधरों?
2: ए बस कल कुछ कम थोड़ा जा हो गया।
0: अच्छा
2: और किसी नाल कोई नहीं उधर गल होनी ना, क्योंकि हुण घरां ही दा फोन रे कोनी ना, ये इस तरह ने दा हुण व्हाट्सएप नहीं ना।
0: सलाम
2: दुआ करने सब तो पहले नौशीन जी ने, गजालाबाद जी ने, सीमा जी ने, और फरजाना जी ने, सहमा जी, रेखा जी, सब की मेरा बहुत बहुत सलाम। और हसन ने मोहतरम परवेज भाई ने, महबूब राय साहब ने, मंदसर साहब ने, अजय सेन साहब, चौधरी मनीर सिंह चक्की वाले, शकील साहब ने, हीरा साहब ने, वाजिद भाई ने, अयूब चौहान साहब ने, जावेद मीर भाई, अब्दुल किशन भाई, नवीद राणा साहब ने, जनाब तारक बट साहब ने, चौधरी मुजफ्फर साहब और चौधरी आसफ रियासत साहब ने, डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने, चौधरी रुखसार साहब, नदीम मंसूर साहब ने, और भी जितने मेहमान सनी महफिल थी सारे संगी साथी ने सभा की बहुत बहुत सलाम
0: जी वाले सलाम तो आडे वास्ते सलाम चुके है जनाब वाजिद दा
2: जी वालेकुम सलाम ते वाजिद रे एक दफा फिर मेरा सलाम और बिलखुसूस आसिम भाई की मेरा स्पेशल सलाम भेजिए
0: बिल्कुल ऑर्डर माले
2: जी जी हाँ
0: जी बिल्कुल पहुंच गया जनाब
2: चलो चलो बिस्मिल्लाह करा लिखने ने की अजमत पाक में हुसैन हुसैन दी नू
0: सुभान अल्लाह
2: अजमत पाक में हसन हुसैन दी नू पहले अदब दे नाल सलाम करना मुख्तसर जी तारीर शान अंदर पढ़िया वाले पढ़न वालिया दे में नाम करना
0: सुभान
2: जितना अकल शाऊर ने सीरदाए आदर इतना में विच कलाम करना लै के मदद हुसैनी में सोद आजद शिरों दास्तान खैर नाम करना
0: वाह सुभान अल्लाह
2: बिस्मिल्लाह करा फिर डाडा याद है छोड़ बेमार सुबरा डाडा याद है छोड़ बेमार सुबरा करबल वाले दा करबल मैदान जाना
0: सुभान अल्लाह
2: लज दीन इस्लाम दे पालने नु अली अकबर ते असगर खान जाना
0: सुभान अल्लाह
2: कर नेजे दी नोक ते चार के ते फिर पढ़दिया पाक कुरान जाना लहरा मार के हाजरी सोदे करबल कोई दसन कुफर इस्लाम दी शान जाना
0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
2: चंद मजाज ने अशार
0: जी जी
2: सने महफिल नजर कसा लिखने ने के कदे इशक मजाज मैदान अंदर
0: वाह
2: कदे इशक मजाज मैदान अंदर रासे खूजे पीले रुखसार कर दे
0: वाह वाह
2: पांबड़ बार फराक दा विच सीने अगे वसल दी खड़ी दीवार कर दे
0: आहा
2: लोड़ लोड़ दीवानिया विच मकतल करन कतल नो तेज तलवार कर दे
0: वाह
2: कर के आने सोज पठान चुगी गफलत ख्वाब दे विच आवार कर दे
0: वाह वाह क्या बात है
2: ਅੱਖਿਆ ਫੇਰ ਬਣ ਕੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਮਨ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਮਨ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਬਹਾਰ ਕਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੈ ਚੇਨ ਕਰਾਰ ਕਰ ਤਾਲੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਦੇਵ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਪਾਗਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਰ ਕਰ ਦੇ ਸੋਜ ਅੱਖੀਓ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਚੁੱਕ ਚਾਦਰ ਸੋਜ ਅੱਖੀਓ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਚੁੱਕ ਚਾਦਰ ਨਸ਼ਰ ਦਾਸਤਾਨ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਚ ਜਾਂ ਸ਼ੁਤਰ ਸਵਾਰ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਲਕ ਦੀ ਟੋਰ ਫਕੀਰ ਕਰਕੇ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ
2: ਕੋਈ ਬਲਕ ਦੀ ਟੋਰ ਫਕੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੰਝਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡੋਬ ਚਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ
2: ਕਿਸੇ ਡੋਬ ਚਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਆਂ ਡੋਬਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ ਸੋਜ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੱਕੇ ਜਿਗਰ ਚੀਰ ਕੇ ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
2: ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਆਖਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਧਰੇ
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ
2: ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਧਰੇ ਪਰ ਉਸੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਅਰੇ ਆਤਿਸ਼ ਨਾ ਲੱਭ ਗੁਫਤਾਰ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਗਈ
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
2: ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਏ ਵਿੱਚ ਖੋਫ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਏ ਵਿੱਚ ਖੋਫ ਤਾਰੀ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਕਤ ਫਤੂਰ ਕਰ ਗਈ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਬੇਕਦਰ ਜ਼ਹੂਰ ਦੁਨੀਆ
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ
2: ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਬੇਕਦਰ ਜ਼ਹੂਰ ਦੁਨੀਆ ਓਏ ਮਲਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਗਈ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
2: ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ
0: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ
2: ਬਾਰਿਸ਼ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ
0: ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ
2: ਵੱਲ ਸੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ
0: ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਤ
2: ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
2: ਜੀ ਜੀ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਯੇ ਥੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਰੋਈ ਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ इन्होंने बड़ी प्यारी शायरी करते हैं अल्लाह इनको सलामत रखे और जनाब अब वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का टाइम हो गया है तो चलेंगे जनाब अब सुनेंगे जोहर की अजान सिस्टम में तो आई नहीं पता नहीं क्या हुआ चलिए अब आप सभी सुनने वालों के लिए पेश कर देते हैं कमर्शियल और उसके बाद अजान।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही जो वक्त है वो बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है। तो चलेंगे जनाब, पहले टाइम चेक करेंगे, उसके बाद ही कमर्शियल की जाने पड़ेंगे। तो चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:44, यानी कि 1:45 past 1। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत होगा, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।
4: 24 hours a day. 103.2. This is Sunrise Radio.
5: Got the greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

0: जी दोस्तों, फिर कभी आप पूरा की सुन पाएंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी बहना गजाला जबीन साहबा आरोज जल से। ढेर सारी तालियां उनके लिए। जी बहना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है बहना, ठीक है आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक।
0: अल्लाह हमेशा ठीक रखे आपको।
1: सब बहन भाई भी ठीक ठाक ही हूँ।
0: सभी ठीक हैं। और वाजिद भाई ने आपको स्पेशल सलाम भेजा था।
1: वालेकुम सलाम, मेरा भी बहुत बहुत सलाम। बड़े दिन हो गए हैं, मैंने उनकी आवाज भी नहीं सुनी।
0: जी जी,
1: तो मेरा भी बहुत बहुत सलाम और दुआ दो उनकी सेहत के लिए।
0: जी बेना,
1: उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे।
0: आमीन आमीन।
1: और मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: जी बेना, बेना आप गजल पढ़ना चाहेंगी तो जरूर पढ़िएगा, टाइम थोड़ा है तो इसलिए आप सुनाइए। जी
1: क्योंकि अब एंड है, मैं इसलिए एंड पे आई हूँ कि कोई और ना हो।
0: ठीक ही आपने। जी
1: इसीलिए बड़े हिसाब से, वो आजकल टाइम भी वैसे भी नाप तोल के होता है।
0: हाँ सही है, टाइम का पता नहीं चलता, ऐसे भागता है जैसे पता नहीं कितनी स्पीड वाला इंजन है ये।
1: हाँ
0: जी,
1: एक थोड़ी देर मैं जरा, कोई की नहीं थी, मैंने कहा जरा देख लूं मेरे लिए कोई स्पेस बनती भी है कि नहीं।
0: नहीं, बाप के लिए स्पेस नहीं होगी, बहन के लिए नहीं होगी तो फिर किसके लिए होगी।
1: मैंने कहा बस माशाल्लाह आने वाले भी तो होते हैं ना।
0: जी जी,
1: चले एक दिन है।
0: जी जी,
1: वो ये तो गाना ही निकल आया, आशियां जल गया खुशी वो
0: गुलिस्तान।
1: ये नहीं वो तो मुझे ना, मुझे गाना आता है तो ना मैं गाती हूँ ना हो सकता है।
0: चलिए
1: चले एक है।
0: जी,
1: एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए।
0: वाह वाह वाह।
1: एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए, मुहर्रम का महीना ना।
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
1: दीने नबी ते वारी अकबर ने भी जवानी की।
0: वाह।
1: दीने नबी ते वारी अकबर ने भी जवानी,
0: सुभान
1: अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए।
0: वाह।
1: अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए, जैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते। जैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए। जैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, जैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए। जहरा के नाज पाले फूलों पे सोने वाले, करबल की खाक में वो हीरे रुला दिए। जहरा के नाज के पाले फूलों पे सोने वाले, करबल की खाक में वो हीरे रुला दिए। एक बच गया था गुंचा, एक बच गया था गुंचा, इसको भी पेश करके सैयद ने झाड़ के यूं दामन दिखा दिए। एक बच गया था गुंचा, इसको भी बेच करके सैयद ने झाड़ के यूं दामन दिखा दिए। बशीर की ही ऐसी, सॉरी भाई ये इंटरनेट कुछ कर रहा है, एक सेकंड। बशीर की ही ऐसी, बशीर की ही ऐसी दर्द दास्तां थी। बशीर की भी ऐसी पुरदर्द दास्तां थी, दिल पत्थरों के वल्ला जिसने हिला दिए। बशर ने उसकी लाजन सैयद के गम में हाफिज, बख्शिश है उसकी लादन सैयद के गम में हाफिज, दो चार आंसू रोकर जिसने बहा दिए।
0: हा
1: सैयद ने करबला में वादे निभा दिए, दीने मोहम्मदी के गुलचन खिला दिए। थैंक यू भाई,
0: बहुत शुक्रिया बहना, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, बहुत प्यारा कलाम मरम के लिहाज से, बहुत शुक्रिया बहना, आपने बहुत सा ख्याल किए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज। ये थी प्यारी बहना गजाला जबीन साहबा, और दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11:25 पर होगी। तब तक के लिए आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, हमारी जानिब से खुदा हाफिज, अल्लाह निगमान एंड गुड बाय।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: जुतियां हुई कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: क्या हुआ, गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत, गाओ।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਬੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
3: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ।
2: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 4889 35।

0: शुरू थे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard?

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
4: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
5: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Checks, bringing you the hottest sounds. Let's go
1: on Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salaam and namaste. Salaam and namaste.
4: है जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा हुआ ऐसे
5: आमिर खान
6: हम शरीफ क्या हुए
7: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश
5: देखो मैं हूँ कहाँ
0: आमिर खान

0: Assalamu alaikum and namaste shikha khush aamadeed welcome to Sunrise Radio 103.2 FM aapka host dost jahan bhi hazir hai mera number beza I'm here till 11 ka beauty sham aur aap sab ke naam rang e mehfil ka program hai and today is amazing day as you know today is Wednesday evening and good evening to you all today 17th of June 2026 the weather has been such a nice and lovely romantic mausam hai aaj kahan pe ja rahe hain what is your beautiful plan for this beautiful evening और हमेशा हम आपके लिए दुआ करूँ और मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप सब खैरियत होंगे ठीक ठाक होंगे फर्स्ट क्लास होंगे अल्लाह ने करे कि बीमार है उनके लिए मैं दुआ करूँ एंड यू लिसनिंग टू रेडियो 100.6 एफएम 103.2 एफएम क्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर डीएबी प्लस ब्रैडफोर्ड कीथली इल्कली स्किप्टन लीज हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकशायर ब्लैकबर्न बर्ल डार्विन नेल्सन अकिंगटन मिल्टन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है एंड वेरी सून विद इन फ्यू डेज इज गोना बी लॉन्च in Derby and you can also download the Sunrise app on Apple Play Store and Google Play Store and also on www.sunriseradio.fm www.sunrise.radio that is all about and that is all about and so many way to get connected with the Sunrise Radio 103.2 FM lani yahan pe chamak rahi hain dhamak rahi hain aur bahut bahut shukriya aap sab ka ke aap apni hazri laga rahe hain aur bahut bahut shukriya aap ka bhi aur yahan pe humne kya karna hai ke hit of the hour pesh karna hai sab sunne walon ke liye ga jo bhi hame yaad karne jo aa chuke hain unke liye ga जो आने वाले हैं उनके लिए क्या जो खामोश लिसनर हैं चोरी चोरी छुप के लिसनर हैं आप सब के लिए होगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच और यहाँ पे आप सब हमें याद करें थैंक यू वेरी मच और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ एंजॉय
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Pakistan Jewelers. 1 Duckworth Lane, Bradford, BD9 5ER. Call now 01274 491 442.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायका तुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रैडफोर्ड 7230 30।
4: Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया होगा definitely, और बहुत बहुत शुक्रिया and thank you very much the hit of the hour और that was played for you और काफ़ी दोस्तों ने enjoy किया, पसंद किया। और यहाँ पे we had a lovely call from वाजे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। हम दुआ गो हैं और आपने भी हमारे लिए दुआएं करते हैं और जरा अफजाई करते हैं। वाजे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया। चौधरी उमर साहब हैं फ्राम हैलिफैक्स हैं, आपने हमें याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देन वी हैड अ लवली लवली कॉल फ्रॉम हमारी प्यारी बहना है ऑल द वे फ्राम बर्मिंघम, सोनिया जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दुआएं करने का, उज़्र अफ़ज़ाई करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, यू नो व्हाट, यू मेड माय इवनिंग टुडे एज़ वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देन वी गॉट लवली कॉल फ्रॉम सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शाहपरी जी हैं, नशीन जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो हमें याद करें, हमारा साथ दे रहे हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। वाजिद भाई आपने भी दो दफ़ा हाजिरी लगाई है और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आने वाला गीत मैं पेश करूंगा और सोनी जी ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए, मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे, बहुत ही खूबसूरत गीत है। और चौधरी उमर साहब ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, आप ड्राइव कर रहे हैं और मैं शाही में कहता हूँ, आज भी कहूँगा आपने बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक में शाम को खुश रखे, शादाबाद रखे। आदर सुहेल अख्तर साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम फ्राम हैलिफैक्स में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ रहें। अजीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया। लीज से बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। एंड दिस इज द वंडरफुल ट्यून द आई विल बी प्लेइंग फॉर ऑल द होमोश लिसनर्स, नो फॉरगेटिंग ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स। एंड इफ यू आर ड्राइविंग, मेक श्योर यू ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि रोड काफ़ी बिजी हैं और काफ़ी बिजी हैं, बिलीव करें, इट इज हेक्टिक इन ब्रैडफोर्ड। एंड बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम Manchester and traffic was, believe it or not, it was so much traffic, unbelievable. And thank you for all those beautiful colors flashing in. Aur ye geet aapke liye, enjoy.

Right, that was a wonderful tune and that was going especially to हमारी प्यारी बहना है बर्मिंघम में सोनी जी आपके लिए था और आपने इंजॉय किया बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी फ्रॉम बर्लिन मोज से आपने हमें याद किया ब्रैडफोर्ड से बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दिस नेक्स्ट ट्रैक इज गोना गो आउट टू यू योर फैमिली योर फ्रेंड यानी कॉलीग्स ने बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्या आपने हमारे साथ देने थैंक यू वेरी मच और वाजिब भाई आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए गया मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करें चौधरी उमेर साहब ये गीत आपके लिए भी होगा आप ही क्या याद करेंगे Enjoy the wonderful tune and drive very, very carefully. And this is the song I'm going to play. Enjoy.

Wow, that was amazing tune. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अनीस दाऊद फ्रॉम लेस्टर से आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. आपने गाने की तारीफ की है, प्रोग्राम की तारीफ की है. थैंक यू वेरी मच. सच लवली लवली माशाल्लाह हमारे अपनी फैमिली हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अच्छा लगा. और आपका भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका कि आपने हमारा साथ देने. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फ़ौरन बाद यहाँ पर गीत होंगे आपके लिए. और हमारे मोहतरम वाजिद भाई, उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, रेखा जी ने दोबारा फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. अली भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आज ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली. थोड़ी देर के बाद गीत हो गए आपके लिए भी. और यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक करेंगे. चौधरी फ़रियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. पाकिस्तान से हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे. कीप इट लॉक्ड.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: राइट, वेलकम बैक लिसनर्स। और यहाँ पे मैंने गीत पेश करना है और अनीस दाऊद ऑल द वे फ्रॉम लेस्टर, और आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे। और यही गीत मैं पेश करूँगा वाजिद भाई हैं, आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम होंगे। और हमारे मोहतरम में चौधरी रुखसार भाई हैं, आपके लिए भी होगा। हमारे शकील साहब हैं, अब्दुल कयूम साहब है फ्राइजिंग और शकील साहब हैं, उनके लिए गीत होगा। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि वो इंजॉय करेंगे। अतीका साहिबा हैं और उनके लिए भी फ्रॉम वाजिद ने हमें इस्लाम आपको पेश किया है और बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और आपने उनके लिए दुआएं भी की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, और आपका अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने ये गीत पेश करना है आपके लिए, और यही गीत मैं पेश करूँगा। हमारे ज़ुबैर भाई हैं, ज़ुबैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बर्मिंघम में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये मैं गीत मैं पेश करने जा रहा हूं आपके लिए होगा। मुझे उम्मीद है, यकीन आप इंजॉय करें। नदीम मंसूर साहब आपके लिए, मुझे उम्मीद है, यकीन आप इंजॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट, यू एंजॉय।

राइट, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, और आपने एंजॉय किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. तनवीर अख्तर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया. और आपके लिए गीतों का और आपकी जो सखी सहेलियाँ हैं उनके लिए गीतों का, मुझे उम्मीद है यकीन कि एंजॉय करेंगे. और अनम रोज़ी इकरा निशा, ये गीत आपके लिए भी होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे. और अनीश दाऊद ऑल द वे फ्रॉम लेस्टर में प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड यू एंजॉयिंग द शो, और हमें अच्छा लगा पूरा प्रोग्राम ही आपके लिए पेश करता हूँ मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच ऑल योर दुआ. And thank you very much. You know what? I really, really appreciate the valuable time. And thank you for your entry as well. And mummy, अच्छा लगा कि आपने भी entry की है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और सुमी जी, ये गीत आपके लिए होगा. And I hope you're going to enjoy this wonderful tune. और जो आपके लिए होगा और आपकी पूरी family के लिए होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यही गीत मैं पेश करूँगा. सुमन very, very special. This woman very, very special. ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप enjoy करेंगे. और जो विद हेल्प नंबर है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी. और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इस गीत को भी इंजॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है. इंजॉय.

0: राइट, यू हैव हेड वन ब्यूटीफुल ट्रैक, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जो अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी गुफ्तगू करके बड़ा ही अच्छा लगा, और कहते हैं चश आ गई, मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थोड़ी देर के बाद आपके लिए गीत होगा, और यहाँ पर हमने करना है, टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कमूरी जी हमारे साथ मस्ती करें, क्या करें, एनी वे यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio, 45 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक की, ब्रेक के फौरन बाद खूबसूरत गीत आने वाला है, और अली भाई आपके लिए गया, तनवीर अख्तर आपके लिए भी होगा, और वाजिद भाई हैं आपके लिए गया, सिमी जी हैं आपके लिए गया, अनीश दाऊद हैं आपके लिए भी होगा, और चौधरी उमर साहब हैं आपके लिए भी होगा, रेखा जी हैं, और शाह अली जी हैं, और सोनिया जी हैं आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद है इंजॉय करेंगे। अब्दुल कयूम साहब है फ्राइजिंग और से आपके लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड।
2: कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

Wow, that was an amazing tune और आपने enjoy किया. That was your favorite track और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आपने दोबारा हमें जो याद किया और हमें अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. Anyway, moving on to this track which will take me to the 9 o'clock news. और अजीम ये गाना आपके लिए और दानिश, this track is going to go out to you. ज़ुबैर भाई हैं ये गाना आपके लिए और आपके जो दोस्तों के नाम होंगे और सब जो दोस्त आपके साथ हैं और उनके लिए गीत होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इस गीत को enjoy करेंगे. बहुत shukriya aap sab ka bhi and thank you very much for keeping it locked with the Sunday Radio on 103.2 FM. Aur yahan pe humne ye geet pesh karna hai. This track will definitely take me to the 9 o'clock news aur yahi geet main pesh karunga. Shah ji, bahut bahut shukriya aapka bhi. Aapne hame yaad kiya, Manchester se yaad kiya aapne. Dr. Malik sahab, bahut bahut shukriya aapka bhi. Aapne hamara saath de rahe, bahut bahut shukriya. Kehte hain hame bada busy tha aaj aur maine aapke liye time nikala. Bahut bahut shukriya. Thank you very much time nikalne ka, uzavzai karne ka. Bahut bahut shukriya. Kehte hain ki main लंदन से वापस आया हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मलिक साहब आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. देर आए दुरुस्त आए. और अब्दुल करीम साहब ये आपके लिए, चौधरी फरियाज साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, वाजिद भाई आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए. और यही गीत मैं पेश करूँगा. मदरसर कियानी साहब है ये गीत आपके लिए. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है. इन्जॉय द ट्रैक. सिमी जी आपके लिए भी.

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. Or you have been making that time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 5 minutes past 9 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown. Keep a lockdown with the Parvez Khan. क्योंकि हमारे एक भाई जल्दी में है, तो उनको हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा जाना है कहीं पे. तो मैंने सोचा क्यों ना आप अभी आ जाएं. और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. गंजम्फर अखलाक खान खान फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम लीज बीस्टन से हैं, और बड़ी खूबसूरत हमारे भाई हैं. और आजकल वो छा गए, इतने खूबसूरत इनकी आवाज़ है, और जितनी इनकी प्यारी आवाज़ है, इतने खूबसूरत गाने भी गुनगुना रहे हैं. और आजकल इन ये खुद जो माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और क्या कहने क्या कहने. और यहाँ पे वेलकम जी एनो खुश आमदीद सत बिस्मिल्ला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. थैंक यू सो मच परवेज खान, आपने हमें मौका दिया.
0: क्यों नहीं मेरे भाई, प्रोग्राम ही आपका, भाई भी आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं आप, और यूके के हमारे सुपरस्टार हैं माशाल्लाह जी.
2: कोई शक नहीं, कोई शक नहीं,
0: कोई शक नहीं, माशाल्लाह. क्या कहने क्या कहने.
2: चले आपकी नजर एक बहुत ही प्यारा सा गाना. दिल विच तू है,
0: हाय हाय,
2: तेरे नाल बहारा.
0: क्या कहने.
2: एक तू साडा, तेरे यार हजारा.
0: क्या कहने.
2: दिल विच तू है,
0: वाह,
2: तेरे नाल बहारा.
0: वाह वाह.
2: एक तू साडा, तेरे यार हजारा. कदी माँ से कदी तोले तोले, सानू पसंद साडा ढोले.
0: वाह.
2: साडी पसंद माही तू.
0: वाह.
2: तेरी पसंद कोई हो, दिल नू पसंद सोना ढोले ढोले. ढोले नू पसंद काले चोले.
0: क्या कहने.
2: तेरिया यादा हर पल आंदियां मैनू. तेरिया सोचा यार सतौंदियां मैनू. तेरिया यादा हर पल आंदियां मैनू. तेरियां सोचा यार सतौंदियां मैनू. हर पासे प्यार दे रोले रोले, सानू पसंद.

0: दिल नू पसंद सोना ढोले ढोले ढोले नू पसंद काले चोले।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: मैंने कहा जी पूरे का पूरा गाना सुना दे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया और हमें यहाँ पे फ्लश आ रही है। और अनीस दाऊद है हमारे लेस्टर से, आपका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने बड़ी तारीफ की आपकी और बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज है, कह रहे कि एक और हो जाए, क्या कहने।
0: ये अपने पठान भाइयों के लिए
1: जी,
0: दो लाइनें आज
1: जी जी
0: के तोरा दजिल के तोरा दजिल के शिन के खाले पतंदी बांधे तोर तोर सरगो ये खोड़ले हम जड़गी बांधे वो तोरा दजिल के
1: आए
0: तोरा दजिल के शिन के खाले पतंदी बांधे तोर तोर सरगो ये खोड़ले हम जड़गी बांधे वो तोरा दजिल के।
1: वाह जी वाह, क्या कहने।
0: तोरा लैला तोरे सिंगार दे तोरा दजिल पतो लवंगो खुशबूदार दे तोरा दजिल के आए तोरा दजिल के पजने वहले तोर खलूना तोर तोर स्तर गोये खोड़ले हम जड़गी बांधे वो तोरा दजिल के।
1: वाह वाह वाह,
0: तोरे बाड़ा तोरे चिश्मान दी तोरा दजिल के तोरे अबरू लका दामान दी तोरा दजिल के
1: हाय
0: तोरा दजिल के बजड़ा सुरे सुरे देखड़ा मा तोर तोर सर गोये खोड़ले हम जड़गी बांधे वो तोरा दजिल के
1: हाय
0: तोरा दजिल के इनके खाले पतंदी बांधे तोर तोर सर गोये खोड़ले हम जड़गी बांधे वो तोरा दजिल के तोरा दजिल के।
1: हाय हाय हाय, कमाल कर दिया मेरे भाई, कमाल, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक और बहुत बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है मेरे भाई। आप छा गए, हर रंग के गीत आप गुनगुना सकते हैं और कमाल कर दिया मेरे भाई, बहुत खूबसूरत, वाह क्या कहने।
0: और दो लाइनें के
1: जी जी अर्शाद
0: आपकी नजर के
1: जी।
0: तो क्या हुआ
1: हाय हाय
0: जुदा हुए
1: हाय हाय
0: मगर है खुशी
1: वाह
0: मिले तो थे
1: वाह।
0: तो क्या हुआ
1: पथू
0: मुड़े रास्ते कुछ दूर संग
1: वाह।

0: होगी कभी।
1: वाह,
0: चलो आज चलते हैं हम।
1: वाह,
0: फिर मुलाकात होगी कभी।
1: हाय हाय,
0: फिर मुलाकात होगी कभी।
1: वाह,
0: दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं।
1: होई होई।
0: छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं। जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मजा, जरूरी थी कहनी भी थोड़ी कमी। चलो आज चलते हैं हम।
1: कमाल कर दिया, कमाल कर।
0: फिर मुलाकात होगी कभी।
1: वाह,
0: फिर मुलाकात होगी कभी।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कमाली करते हैं मेरे भाई, कमाली। और आपकी शायरी का ना एक और मज़ा है, एक और खूबसूरती है। और जो आप शायरी भी करते हैं, गाना भी गुनगुनाते हैं, माहिया भी, और एक मैं किस किस की तारीफ करूँ मेरे भाई, मैं क्या करूँ यहाँ पे, क्या करें। और आमदन आप जी।
0: अच्छा, कुछ सुनेंगे और या
1: कुछ सुना दें, शायरी करनी है सुना दें, कोई बात नहीं जी।
0: अरे आपको एक बहुत ही प्यारा सा
1: जी जी
0: शेयर सुनाता हूँ, आप भी जानते हैं नास खान मैनचेस्टर से। आप
1: जी जी माशाल्लाह, जी जी जी जी।
0: वो कहती हैं कि
1: वाह,
0: अरे आज पिला दो आंखों से।
1: आहा, क्या कहने,
0: आज पिला दो ना आंखों से।
1: वाह,
0: दिल बहला दो आंखों से।
1: बहुत खूब,
0: चंद शराबी अच्छे से शेर सुना दो आंखों से।
1: बहुत खूब,
0: अपनों से शर्माना क्या।
1: वाह,
0: कुछ फरमा दो आंखों से।
1: वाह,
0: अरे मुंह से प्यार की बात करो या समझा दो आंखों से।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: प्यार के जो भी होते हैं, प्यार के जो भी होते हैं,
1: वाह,
0: गुर सिखला दो आंखों से।
1: बहुत खूब,
0: सोई हुई है मुद्दत से प्रीत जगा दो आंखों से।
1: आंखों से, हाय हाय।
0: और नाज के दिल में चाहत की।
1: वाह,
0: नाज के दिल में चाहत की।
1: वाह,
0: आग लगा दो आंखों से।
1: ओए होए, क्या कहने,
0: आज पिला दो आंखों से, दिल बहला दो आंखों से।
1: कमाल, कमाल।
0: चंद शराबी अच्छे से, अरे शेर सुना दो ना आंखों से।
1: वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
0: ये बहुत
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत है। और आंखें आंखें है, क्या बात कहेंगे उनके बारे में। वाह, क्या कहने।
0: अरे परवेज खान के
1: जी,
0: दिल शीशे का ना पत्थर का,

0: तो तरन्नुम के साथ के
1: जी
0: ओ दिल शीशे का ना पत्थर का
1: वाह
0: फिर कांच के जैसे टूटा क्यों
1: बहुत खूब
0: और जब तन मन से मैं उसका था फिर उसने मुझको लूटा क्यों
1: वाह वाह वाह वाह
0: कोई वादे पूरे किए नहीं गर गम उसने ये दिए नहीं
1: बहुत खूब
0: वो दावेदार सच्चाइयों का है आखिर इतना झूठा क्यों है आखिर इतना झूठा क्यों
1: वाह वाह वाह
0: दिल शीशे का ना पत्थर का फिर कांच के जैसे टूटा क्यों
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और जितने भी
0: मैं आपके सच है ना परवेज खान के दिल ना शीशे का होता है ना पत्थर का होता है टूटता कैसे है
1: टूटता कैसे है ये एक सोचने की बात है कैसे टूटता है और देखते हैं
0: और जाने से पहले छोटी सी गजल
1: जी जी
0: आप और से सुनिएगा
1: जी जी
0: आपके लिसनर्स की नजर है कि
1: अर्शाद
0: तुझसे बिछड़े हैं
1: वाह
0: अरे तुझसे बिछड़े हैं मगर इश्क कहां खत्म हुआ है
1: बहुत खूब
0: ये वो जीती हुई बाजी है ये वो जीती हुई बाजी है
1: वाह
0: जो हारी ना गई
1: वाह
0: और तू है वो ख्वाब
1: वाह
0: जो आंखों से उतारा ना गया
1: वाह वाह
0: तू है वो ख्वाहिश
1: वाह
0: तू है वो ख्वाहिश जो आंखों से कभी मारी ना गई
1: बहुत खूब
0: अरे बिछड़ने वाले
1: हाय हाय
0: बिछड़ने वाले मुझे बताता मैं तेरी मुश्किल का पास रखता
1: वाह
0: जो मेरे बस में जरा भी होता कभी ना तुझको उदास करता
1: हाय हाय क्या कहने बहुत खूब
0: बिछड़ने वाले बता के जाता कोई ना मुझको मलाल होता मैं तेरे लफ्जों की लाज रखता
1: वाह
0: कोई ना तुझसे सवाल होता
1: बहुत खूब
0: बिछड़ने वाले मैं जानता हूँ बिछड़ने वाले मैं जानता हूँ जुदाई तेरा इलाज कब था
1: वाह
0: तू मेरे बारे में बदगुमा हो तुम्हारा ऐसा मिजाज कब था
1: बहुत खूब
0: बिछड़ने वाले कसूर मेरा मेरे मुकद्दर में मात थी ना
1: वाह
0: तुम्हारा हक था शहर को पाना ये मेरे हिस्से की रात थी ना
1: बहुत खूब
0: बिछड़ने वाले
1: वाह
0: बिछड़ने वाले ये बात सच है बिछड़ के तुझसे कुछ अंदर ही अंदर कट रहा है ए जाने वाले मुझे यकीन है कलेजा तेरा भी फट रहा है
1: बहुत खूब
0: बिछड़ने वाले बता के जाता मैं तेरी मुश्किल का पास रखता
1: बहुत खूब
0: अरे तुझसे बिछड़े हैं मगर इश्क कहाँ खत्म हुआ है
1: हाय हाय क्या कहने वाह वाह क्या कहने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा अंदाज आपका मेरे भाई क्या के और यहाँ पे आपके लिए ये बहुत अच्छा लगा मेरे भाई जो आपका अंदाज है बड़ा ही प्यारा अंदाज है और क्या कहने मेरे भाई बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त मुझे दिया और
0: आपके तमाम लिसनर्स को मेरा आदाब
1: बहुत वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें और दोबारा आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया गिव मी वैल्युएबल टाइम बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें दुआ में अल्लाह हाफिज़ बहुत बहुत शुक्रिया ये थे हमारे जी आई के ऑफिशियल और जो बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ है बड़ी खूबसूरत शायरी भी करते हैं गाने भी गुनगुनाते हैं इज ऑलराउंडर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच है और यहां पे हमारा साथ दे रहे हैं और छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद यहां पे और छोटी सी ब्रेक करेंगे कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो
2: सनराइज रेडियो ट्रेंड सेटर्स इन एशियन ब्रॉडकास्टिंग वी लीड अदर्स फॉलो
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
4: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
3: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
4: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
5: Sunrise and music.
1: वेलकम बैक लिस्टनर लिस्टनर रेडियो 103.2 एफएम और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है और यहाँ पे हमारे बहुत ही दिल अजीज हमारे मोहसिन हैं और हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं ओल्ड वे फ्रॉम पाकिस्तान जैन खुश आमदीद सत बिस्मिल्ला

0: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजूर, चौधरी फ्लियार साहब, चौधरी साहब आवाज़ आ रही है? चौधरी साहब कहाँ चले गए? आप हवा के दोष में, और चौधरी साहब मेरे ख्याल खामोशी हो गई है, और पता नहीं ये कंप्यूटर हमारा क्या मस्ती में वजह में आज। और चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, चौधरी साहब आवाज़ आ रही है? और यहाँ भी हमने क्या करने के, हमारा साथ है मोहम्मद रफी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने सर से ठीक है आपकी?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया अल्लाह पाक का।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप आए और बाहर आ गई है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बड़ी मेहरबानी आपकी सर।
0: आपकी शुक्रगुजार हूँ, और बहुत अच्छा लगा। और कैसे दिन गुजरा आपका?
1: मेरा दिन फंटास्टिक।
0: क्या कहने।
1: हाँ जी,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये सुन के मुझे बहुत मजा आया। जी
1: हमें भी बहुत मजा आता है, आपको सुन सुन कर बहुत खुशी होती है।
0: माशाल्लाह।
1: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। मुझे सुनने वालों पे लाखों सलाम, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमीन ता फलक जिसकी परवाज है।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: वही जिस पे हमको नाज है, वही जिस पे सारे सनराइज रेडियो को नाज है।
0: वाह क्या कहने।
1: परवेज खान जी, आप ही की तो वो आवाज है।
0: हाय हाय हाय, सदके सदके। वाह वाह,
1: बड़ा मजा आता है।
0: बड़ा भाई मजा आता है, बड़ा ही मजा, बहुत
1: बहुत बहुत, बहुत ही मजा आता है। ऐसे जैसे मुंह में लड्डू जाता है आपके लिए, ये मैं पेश करता हूँ। तो
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: फरमाइश करने वाले आप परवेज जी, साहिल गुरु जी, बाबी साहबा, सिमी बहन, डॉक्टर हिम्मत कुमार, डॉक्टर पाशा, नर्स फरजाना एंड नर्स जूली
0: जी।
1: तो सबसे पहले पिछले हफ्ते की तरह ये भी मोहम्मद रफी साहब की गाई हुई एक गजल है।
0: जी जी, गो अहेड गो अहेड।
1: आंखों से मिली आंखें, दो कलियां झूम गई, दीवाने के होठों को दो कलियां चूम गई। आँखों से मिली आँखें, दो कलियां झूम गई, दीवाने के होठों को दो कलियां चूम गई।
0: क्या कहने।
1: यादों की आँखों ने फिर देखा नया सपना, खुशियों ने जन्म लिया, अब रूप बदल

0: आंखों से मिली आंखें,
1: वाह क्या कहने,
0: जख्मों के उबरते ही जीने का मजा आया, कोई मुझको सजाने को सावन की तरह छाया, सीने की धड़कन में मच गई है धूम नई, वो दो कलियां चूम गई आंखों से।

0: को दो कलियां चूम गई।
1: क्या कहने,
0: यकीन कर लो
1: वाह वाह,
0: मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे।

0: तुम्ही हो साथी जीवन मरण के, तुम्ही तो हो एतबार मेरा। तुम्ही ने आँखों की नींद छीनी, तुम्ही ने लूटा करार दिल का। तुम्ही हो साथी जीवन मरण के, तुम्ही तो हो एतबार मेरा। डगर डगर पर सुहानी रंगत है तुमसे तुमसे, यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे।
1: वाओ,
0: सिवा तुम्हारे न कोई अपना, हमेशा देखा तुम्हारा।

0: सिवा तुम्हारे न कोई अपना, हमेशा देखा तुम्हारा सपना, किताबे दिल पर लिखी हुई है तुम्हारी चाहत की एक रचना, मेरी कहानी बस एक हकीकत है तुमसे तुमसे, अरे यकीन कर लो ना, मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे। ओके सर जी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया सर,
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें,
0: दुआ में अल्लाह हाफिज़,
1: अल्लाह टेक केयर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। वाओ, दैट वाज ओनली वन एंड ओनली मोहम्मद रफी साहब, हमारे यॉर्कशायर के मोहम्मद रफी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमें अच्छा लगा। और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं चौधरी फरियाज साहब हैं, उनका वेलकम कहेंगे, जी हां कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफ्सेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
4: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सुनर रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और दोबारा फ़ोन कर सकेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम भाई, हमारे दोस्त नसमी जी, आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। सतारा जी, आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं थोड़ी देर के बाद इसको मैं कंप्यूटर को थोड़ा सा सीधा करता हूँ, इसका क्या मसला क्या माजरा क्या, क्योंकि लाइनें ड्रॉप कर रहे हैं। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम है चौधरी फयाज साहब है, और हमारा साथ बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और उनकी देखते हैं कि आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। यहाँ पे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे चौधरी फरियाद
5: साहब। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह जी,
4: ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चौधरी साहब, शुक्र है शुक्र है। मैं पता नहीं क्या होया, कोई मसला हो गया, बड़ी खामोशी होगी वहाँ पे तुम्हारी तरफ। मैं अल्लाह
5: खैर,
4: मैं कोई मसला हो गया कंप्यूटर से, थोड़ा खामोश हो गया सी, तो मैं थोड़ा इसी दोबारा से जगाया इसी कंप्यूटर की। तो और अपनी सुना सही, ठीक है तुम्हारी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप भैया की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। और आपके भी चाहने वाले आपको सलाम पेश करते हैं, हमारे मोहतरम में डॉक्टर मालिक साहब हैं, वो आपको सलाम पेश कर रहे थे माशाल्लाह, उन्होंने फ़ोन किया। और हमारे मुदस्सर कियानी साहब हैं, वो आपको सलाम पेश किया, उन्होंने वाजिब भाई हैं, उन्होंने सलाम पेश किया, और सब सुनने वाले आपको सलाम पेश करते हैं जी। जी बिस्मिल्लाह,
5: सुरेश भाई उन्होंने सा सलाम दो शुरू करा।
4: जी जी बिस्मिल्लाह करते हैं सब, बिस्मिल्लाह।
5: सबसे पहले अतीका बाजी ने उन्होंने मेरा बहुत बहुत सलाम।
4: वालेकुम सलाम।
5: और पता लगा कि उन्होंने बनोई साहब वफात पाई जी,
4: और हमारा भी दुख उनके साथ
5: है।
4: जी जी, हमारा भी दुख उनके साथ है, और हम ये क्योंकि एक फैमिली है और एक फैमिली की है, और माशाल्लाह और उनके साथ हैं, ये नहीं सोचते कि वो अकेले हैं। और मैं भी और
5: सारे दुआवां ने कहला
4: जी,
5: अल्लाह पाक अतीका बाजी की सब्र अता कर, और पूरी फैमिली की सब्र अता कर,
4: बड़े
5: मुकद्दस दिन ने, बड़े नेक दिन ने
4: जी।
5: और ये भी एक इंसान जाना उसने वास्ते काफी
4: जी,
5: क्योंकि जे नेक दिन नी जी गल होनी है वो कुछ होर होनी है
4: जी। ठीक है ठीक है, कोई
5: ऐसा सुनिया कि मोहर्रम पाक शुरू हो गया
4: जी,
5: अल्लाह पाक उन्हें की इन्हें पाक दिनों ने तो खैर, और आपने रहमत ना हजूर पाक ने वसीले ना
4: आमीन
5: उन्होंने आखिरत नहीं मंगना आसान फरमा
4: आमीन आमीन आमीन आमीन सुम आमीन।
5: उन्होंने नाल नशीन जी ने उन्होंने मेरा बहुत बहुत सलाम, उन्होंने शुक्रिया हमेशा मेरी हौसला अफजाई करने ने
4: जी जी।
5: मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करा
4: जी।
5: उन्होंने नाल सिमी जी ने, उन्होंने अम्मा जी ने, गजारा बाजी ने, उमर कुलसुम जी ने, सीमा जी ने
4: जी,
5: शाह परी जी ने, जुलेखा जी ने, सितारा जी ने, भाभी साहब ने, गिद्दर भाई ने, रोजाना जी, साइमा जी,
4: जी
5: सोनिया जी,
4: जी
5: और सभा अर्जू
4: जी,
5: रुखसाना जी, सभा मेरा बहुत बहुत सलाम।
4: वालेकुम सलाम।
5: और मोहतरम अमर भाई ने
4: जी,
5: अबू बुलाई साहब ने, दसर साहब ने
4: जी,
5: उन्होंने शुक्रिया
4: जी।
5: अजी सलीम साहब, चौधरी मनीर सिंह, चक्की आले शकील साहब, इजाज साहब, वाजिद भाई, उन्होंने शुक्रिया, अयूब चौहान साहब, जावेद मीर भाई, अब्दुल क्यूम
4: जी,
5: भाई नवीद राणा साहब, तारक बार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, चौधरी आसफ रियासत साहब, और डॉक्टर चौधरी मालिक साहब, उन्होंने शुक्रिया हमेशा याद करने ने
4: जी।
5: चौधरी रुखसार साहब ने, एम खान साहब ने, नजीम मंसूर साहब ने, राजा वकास, राजा दुलकरनैन
4: जी,
5: चौधरी मीर सिंह मेरा भरा, और जफर अली हीरो साहब, महमूद साहब, राजा शोहेब साहब, और भी जितने किसी ने महफुल इजमा माना
4: जी,
5: सब मेरा बहुत बहुत सलाम।
4: वालेकुम असलम।
5: बिस्मिल्लाह करा
4: बिस्मिल्लाह
5: लिखने के उस दी सेब से रब आप बयान कर दो
4: सुभान अल्लाह माशाल्लाह
5: उस दी सेब से रब आप बयान कर दा जेदा आदम तो पहले जहूर होया
4: वाह वाह वाह
5: नूर नूर दे विचों जुदा आया जिसने समझ लिया वहम दूर होया
4: वाह जी वाह
5: 12 रबी अल अवल समार दा दिन अर्श पर सारा नूर ओ नूर होया
4: वाह
5: ओ रब ने हुक्म महबूब दिता कर दे दूर उदासियां मेरिया नू तेन जैनब उदास दा वास्ता ही जेड़े कासम दे मुख ते पे हो सन उन्हां फुलां दी बास दा वास्ता ही मार रखम दा छट्टा महबूब उते तेन असगर दी प्यास दा वास्ता ही
4: हाय हाय हाय वाह
5: बिस्मिल्लाह करा मौला गफूर रहीम है तू तेरे बाद लिखिया केड़ा टाल दई चारे तरफों मुसीबतां घेर लिया दुख लो लो पे आग बार दई
4: वाह जी वाह क्या कहने
5: तेरे अगे क्या दुखरे फूल दसां तेरे अगे क्या दुखरे फूल दसां पता सब तेनो मेरे आल दई कर करो महबूब बे आसरे दे
4: सारे
5: करम महबूब बे आसरे ते तेन वास्ता जरा दे लाल दाई
4: वाह वाह चली सम
5: ते जना मजार ने रंग
4: जी
5: इन्हने के इधर रोज दीदे अशक बार रहने
4: वाह
5: इधर रोज दीदे अशक बार रहने उधर नित आसे अच्छों डुल दिया नहीं इधर इधर जब चखड़ा मेश चुल दे उधर हवा फराक दिया चुल दिया नहीं
4: वाह जी वाह वाह
5: इधर उन्हां दे सिदम बर्दाश्त सारे उधर फुलां भी साड़ियां फुल दिया नहीं इधर नींद नहीं आंदी जमोद राती है उधर सुबह थोड़ी हुई अखियां खुल दिया नहीं
4: वाह वाह वाह
5: अखिया इधर उधर मिला के चार अखियां इधर उधर मिला के चार अखियां है दो रो रही दो रोंदियां नहीं इन्हें मेहनत का ठेका उठाई रखिया उन्हें कसम खादी वे राजी आंदा नहीं इन्हें मेहनत का ठेका उठाई रखिया उन्हें कसम खादी राजी आंदिया नहीं इन्हें सब कर लिया मंजूर शर्त किसे तोल से आज खुलांदिया नहीं
4: है
5: भी अखियां दी वह भी जमोर दी अखियां दो नित सौन राती से दो सौंदिया नहीं
4: वाह चौधरी साहब
5: अखिया करम ना जेकर फरमाए मौला जेकर फरमाए मौला इसलिए रोग बछोड़े दा जाना ही नहीं ताने देन शरीक जिस यार पीछे सदियां बीतियां मैंने बुलाना ही नहीं
4: वाह चौधरी साहब वाह वाह वाह
5: पत्थर दिल मगरूर दा नरम कर दे वरना सितम तो बाद उस आना ही नहीं उसकी सोच भी चौसी जमुर्द खबरे वो मैनो चाहना थे उसने रब चाहना ही नहीं
4: चाहना ही नहीं आये हाय चौधरी साहब वाह
5: अच्छा फिर थोड़ी जा छोड़ी जान ना इजर फराक तेरे
4: वाह
5: छोड़ी जाना इजर फराक तेरे माया मौज खुदा थी मांग मांग के बलिया मेट कर दीसी मजार मेरी उतु इजर सवारियां लंग लंग
4: वाह चौधरी साहब वाह वाह
5: कोनी नैना ने चार दीवार अंदरों चार सुर्ख कर दितिया ने रंग रंग के बोटी बोटी कर जिसम जमुर्द खादा तेरे इश्क दे प्यार ने नाग ने डंग डंग के
4: वाह चौधरी साहब वाह
5: आखिया तेन वेख के मरहबा कौन कहंदा तेनू वेख के मरहबा कौन कहंदा जेरा मस्त पर नक्शो नजार होंदा वाह वाह खूब सरापा वजूद तेरा तेरा लाल रंग जैसे अनार होंदा
4: वाह चौधरी साहब वाह वाह
5: जदे रोशन चिराग भी मात होंदे तेरे रुख इधर चमकार होंदा तेरे रुख दा जिधर चमकार होंदा एवें सोनिया विच जमुर्द दिसे एवें सोनिया विच जमुर्द दिसे जिवें ताश विच यक्का सरदार होंदा
4: वाह चौधरी साहब वाह वाह
5: अखिया कोई कमी नहीं छोड़ी बनान वाले कोई कमी नहीं छोड़ी बनान वाले हुसन विच पर नकश हर नकश वंगार तुए करो कद कबूतरा वांग गर्दन मस्त नैना हो मुश्क बहार तुए
4: वाह चौधरी साहब
5: ओठ नाजुक मुलायम गुलफाम चेहरा बांकी चाल पुर लुत्फ रफ्तार तुए जिवे ताज विच यक्का जमोजे होंदा इंज सोने विच सरदार तुए
4: वाह चौधरी साहब मन गया
5: ते आखिरी शेर आपका चेहरा दिलदार आपका चेहरा दिलदार ऐसे जैसे फलक से निकला अफताब कोई हो स्या रंग गैसु बिखरे यूं मुंह पर जैसे बदली में छुपा मेहताब कोई हो
4: वाह चौधरी साहब वाह
5: आपका चेहरा दिलदार ऐसे जैसे फलक से निकला अफताब कोई हो स्या रंग गैसु बिखरे यूं मुंह पर जैसे बदली में छुपा मेहताब कोई हो
4: हाय हाय हाय हाय हाय
5: मस्ती आंखों में बिल्कुल शराब जैसी होंठ लाल रंग जैसे गुलाब कोई हो तेरे जोबन की मौज जमोर जैसे जैसे गंगा में आया सलाब कोई हो
4: वाह चौधरी साहब मनी के बड़ी मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया और फ्लश करने पे ने साडे मोहतरम भाई ने डॉक्टर मलिक साहब माशाल्लाह वो फ्लश करने पे बड़ी मेहरबानी उन्होंने तो साडे एक वीर ने बड़े शुक्रिया अदा करना उन्होंने भी तुसा ने भी शुक्रिया अदा करना शुएब भाई ने तो कह रहे हैं कि देखो टाइम आए तो नेक्स्ट आवर छे दोबारा सुनाए तो असा दिल भरिया नहीं रहा तो अज थोड़ा जो बाकी है तो बड़ी तुसा की मेहरबानी तो शुक्रिया सर ठीक है ना थोड़ा जा बड़ी मेहरबानी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया भाई और बाहर आ गए अल्लाह सुनने वाला है और बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करना चौधरी फरियाज साहब हमने जो पैगाम है ना वो आगे हमने पहुँचा दिया ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी फरियाज साहब आपके चाहने वाले आपको सलाम पेश करते हैं नौशीन साहब हैं बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने कहा भी वो भी हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया
5: नौशीन बहुत बहुत शुक्रिया फिर शुक्रिया
4: बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह सुनने वाले अल्लाह सुनने वाले बहुत बहुत शुक्रिया ये थे हमारे मोहतरम चौधरी फरियाज साहब और यहाँ भी हमने क्या करना है कि हमने यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त हैं और जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है और बहुत अच्छा लगता है जब ये शिरकत करते हैं प्रोग्राम में और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही नायाब और ये हैं हमारे मोहतरम भाई हमारे दोस्त हमारे बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है ये हैं हमारे शकील साहब हैं ऑल द वे फ्राम बर्ल लंकशायर से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु
6: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु
4: माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे टीवी मेरे भाई की ठीक ठाक से ठीक है आपकी
6: शुक्र है अल्लाह का
4: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा लग रहा है और आपको सलाम पेश करें हमारे वाजिद भाई हैं वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं अली भाई हैं वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा
6: वालेकुम अस्सलाम
4: जी
6: तो मेरी तरफ से भी सब सुनने वालों को बहुत बहुत
4: वालेकुम अस्सलाम
6: जिनमें जावेद मीर साहब हैं
4: जी
6: महबूब इलाही हैं वाजिद भाई हैं
4: जी
6: मलिक साहब है चौधरी रुखसार साहब हैं
4: जी
6: मुजफ्फर भाई हैं चौधरी मुजफ्फर साहब
4: वाह
6: तारिक जुल्फी हैं चौधरी फरियाद साहब आए थे उनको भी
4: जी
6: किट भाई हैं चौधरी नीर साहब हैं
4: जी
6: या खान राया तरसैन
4: वाह
6: तकीर शाह है आदस अख्तर हैं अली भाई हैं
4: माशाल्लाह
6: सब शहरेज भाई हैं
4: वाह
6: नदीम मंसूर हैं
4: जी
6: अपने सितारा बहन
4: जी
6: अतीका जी सुमित्रा बहन है गजाला रुखसाना साहबा मुल्क कुलसुम साहबा शाह भाई
4: जी
6: सब मित्र से अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात
6: तो एक गजल लाया हूँ आपकी महफिल के लिए ये फर्ज शहजाद है लिखने वाले
4: जी जी अरशाद
6: कहते हैं रंज के हाथों गीत खुशी के लिखवाओ तो बात बने
4: हाय हाय क्या कहने
6: रंज के हाथों गीत खुशी के लिखवाओ तो बात बने
4: वाह
6: तोड़ के अशकों की जंजीरें मुस्काओ तो
4: बात बने क्या कहने वाह
6: या शोर मचाती आवाजों से तोड़ के रिश्ता पल दो पल
4: वाह
6: खामोशी की सरगोशी कर सुन पाओ तो बात बने
4: हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह
6: गुलशन में तो खुशबू हर सूरत ही है गुल रुत में
4: वाह
6: गुलशन में तो खुशबू हर सूरत ही है गुल रुत में सहरा में जाकर गुंचे में खाओ तो बात बने
4: बात बने वाह वाह
6: मुझको ईर सियाल से मतलब और नरांजे से
4: हाय हाय
6: तोड़ के बंधन रस्मों का तुम आ जाओ तो बात बने
4: आय हाय क्या कहने
6: बात वफा की दिल वालों की नगरी में है आम बहुत
4: आहा क्या कहने
6: शहर बुता में गीत वफा के गा पाओ तो बात बने
4: आय हाय आय हाय
6: गोद में खुशियों की हर कोई चैन से सोता है
4: आहा
6: गोद में खुशियों की हर कोई चैन से सोता है
4: वाह
6: मूंद की आंखें गम बाहों में लहराओ तो बात
4: बने क्या कहने वाह
6: क्या तो आखिर ये कहते हैं
4: जी जी
6: सितारे तोड़ के लाना अफसानों की बातें
4: वाह वाह वाह वाह वाह
6: चांद सितारे तोड़ के लाना अफसानों की बातें हैं मेरे लिए जो प्यार नजर में भर लाओ तो बात बने
4: आए हाय क्या कहने बहुत खूब बहुत खूब
6: शुक्रिया
4: बड़ा अच्छा लगा बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मज़ा आया और क्या कहने आपकी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी थोड़ा टाइम है और पढ़ सकते हैं कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें
6: नातिक है, इनका नाम नातिक कटावसी।
7: जी जी जी जी जी जी इरशाद।
6: वो कहते हैं किसको मेहरबान कहिए,
7: हाय हाय हाय हाय हाय वाह,
6: किसको मेहरबान
7: कहिए,
6: मेहरबान अपना,
7: आहा
6: वक्त की ये बातें हैं, वक्त अब कहाँ अपना,
7: हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब वाह,
6: अब जहाँ में बाकी है आस है निशान अपना,
7: वाह वाह
6: उड़ गए सब बादल रह गया धुआं,
7: बहुत शुक्रिया वाह वाह क्या कह रहे जी,
6: ऐ खुदा गला सुन ले हमारी बेकरारी का,
7: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
6: आज हाल कहता है एक बेजुबान अपना
7: ना अपना, आय हाय क्या कहने,
6: सो के रात काटी है बेकसी के पहलू में,
7: आहा आहा वाह वाह,
6: चांदनी ने देखा है मेरे घर समा अपना,
7: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब,
6: हम सफर के किस्से को खत्म करके चलते हैं, रास्ता बदलती है अब दास्ता अपना,
7: वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत,
6: नाम रात दुनिया में रह के खूब भर पाए, चल निकल चले हैं दिल कुछ नहीं यहाँ अपना,
7: बहुत खूब बहुत खूब,
6: तो जानते हुए नातिक हम वतन की हालत को,
7: वाह
6: जानते हुए नातिक हम वतन की हालत को,
7: वाह
6: ढूंढते फिरे जाकर किस लिए मकान अपना,
7: वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब कमाल कर दिया वाह,
6: तो मोहर्रम के वाला से अगर इजाजत दो तो हम शेयर करें,
7: सर जी क्यों नहीं सर जी, मैं पूछने वाला था आपसे, मैंने कहा थोड़ा जी कर दे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी,
6: कितना बुलंद मर्तबा पाया हुसैन ने,
7: हाय हाय हाय वाह,
6: राहे खुदा में घर को लुटाया हुसैन ने,
7: वाह
6: कैसे ब्याह हो हजरत शबीर का मकाम,
7: वाह
6: बेहद बुलंद मर्तबा पाया हुसैन ने,
7: हाय हाय वाह वाह,
6: छोड़ी छोड़ी न वक्त नजा भी जबीर ने नमाज,
7: हाय हाय हाय,
6: छोड़ी न वक्त नजा भी शबीर ने नमाज, शद सजदे में रख के सर को कटाया हुसैन ने,
7: हाय हाय हाय,
6: जारी थी लबे हुसैन पे तलावते कुरान की, तलावत कुरान की कलाम खुदा इस हाल में सुनाया हुसैन ने,
7: हाय हाय हाय हाय माशाल्लाह,
6: आले नबी की शान तलावत तो देखिए,
7: हाय
6: नेजे की नोक पे कुरान सुनाया,
7: वाह वाह वाह वाह वाह,
6: करबल की खाक पे निसार करबल की खाक पे निसार जाए बार बार, खूने रसूल उसको पिलाया हुसैन ने,
7: हाय हाय हाय हाय हाय,
6: तेरे का देख के सकूं होता है ये गुमान, नाना का वादा खूब निभाया हुसैन
7: ने, हाय हाय हाय हाय वाह वाह,
6: ये थोड़ा सा
7: बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने जिक्र किया माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे मोहतरम अली भाई हैं और शाह जी हैं आपका भी शुक्रिया अदा कर लें, तो उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की है कि आपने कुछ नेक्स्ट आवर में इसके के हवाले से और मुहर्रम के हवाले से थोड़ा सा और सुना देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत मैसेज किया है शाह जी ने, जी जी कोशिश करें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके पास जो इल्म है जो नॉलेज है आपके पास माशाल्लाह बहुत सारा है, और बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप शिक्र करते हैं और इसके हवाले से थोड़ा सा और करेंगे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे मोहतरम हमारे शकील साहब माशाल्लाह, और जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, यहाँ पे हमने टाइम चेक करना है,
8: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
7: Time in the studio is 46 minutes past 9 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked in with Parviz Khan. Bahut bahut shukriya aapka bhi, aur yahan pe chote se break karenge, aur break ke foran baad yahan pe maine azan bhi pesh karni hai, aur mashallah, aur uske saath hum chalenge. Keep it locked with Sunrise Radio.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग रेडियो 103.2 एफएम। यहाँ पे अजान होनी चाहिए और यहाँ पे अजान नहीं है, और यहाँ पे हमने क्या पेश करना है कि अजान पेश करनी है और वो यहाँ पे, और अपने अपने मकामी टाइम टेबल देख के सुन के अपने नमाज अदा करेंगे। मेरे लिए मेरी फैमिली की दुआ करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो मेरा साथ दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो। यहाँ पे हमने पेश करनी है मगरब की अजान इन यॉर्कशायर ब्रैडफोर्ड में।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम, और यहां भी हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 5 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. और यहाँ भी हमारे उस्ताद मोहतरम में हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. और ये हैं हमारे एम खान जी हैं माशाल्लाह, और आपको पता है कि माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं, और सब इनको आप पसंद करते हैं, हम भी इनको पसंद करते हैं माशाल्लाह. तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व जी हजूर.
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू. जो आपने अच्छे कलमात के ये कहे हैं, ये सब के बारे में, वो आपके बारे में, आपके सच्चे में, मेरे बारे में अल्लाह कबूल फरमाए.
0: आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन.
2: वैसे ही अलग हो जाऊं तो फिर क्या ही बात है. तो कोई एक प्रोफेसर था
0: जी जी जी,
2: तो उसके पास एक नक्शा था
0: जी.
2: उसने नक्शे में एक आदमी का दरमियान में फोटो था, तो उसे गुस्सा आया, सब फाड़ दिया.
0: फाड़ दिया, अच्छा,
2: पूरी दुनिया का नक्शा.
0: अच्छा,
2: फाड़ चुका तो कहने लगा, कोई आप नौजवानों में से है कोई जो इसको दोबारा ठीक फौरन काट दे 5 मिनट के अंदर.
0: जी,
2: बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर जी मैं कर सकता हूँ.
0: अच्छा,
2: उस बच्चे ने पहले किया कि वो फोटो इकट्ठा किया, फोटो दुरुस्त किया,
0: जमा किया. जी जी,
2: सब जितने का वो नक्शे दुनिया के, तो सब उसके साथ मिला दिए
0: जी.
2: तो प्रोफेसर ने पूछा, पर ये क्या तूने कितना जल्दी क्यों कर दिया, कैसे तुझे ये अकल मिला. कहने लगा कि मैंने सोचा अगर एक आदमी को दुरुस्त कर दो तो पूरी दुनिया दुरुस्त हो जाती.
0: क्या बात है, क्या बात है. देखो,
2: मैंने वो फोटो था उसको दुरुस्त किया
0: जी.
2: मैंने ये से किया कि ये शायद ये दुरुस्त हो जाए तो दुनिया दुरुस्त हो सके.
0: दुनिया दुरुस्त हो सकती. वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खुश हुए. वाह जी वाह, क्या कहने.
2: इरशाद फरमाते हैं
0: जी जी, इरशाद
2: क्या फरमाते हैं, तेरा वजूद सरापाए तजलिए फरंग.
0: आय हाय हाय हाय, वाह वाह.
2: कि तू वहाँ की अमारत घरों की है तामीर.
0: वाह बहुत खूब.
2: मगर ये पैकरे खाकी खुदी से है खाली.
0: वाह.
2: फकत नियाम है तू जरो रंग कारो बे शमशीर.
0: बहुत खूब बहुत खूब.
2: मियां साहब का एक अपना अंदाज है. मियां साहब इरशाद फरमाते हैं
0: जी जी, इरशाद.
2: कितनी वारी तोबा पन्नी में हां बे इतबारा.
0: हाय हाय हाय, वाह.
2: फिर भी तेरे दर तोबा की थी, बख्शे बख्शिश करें बख्शन हारा.
0: बहुत खूब, वाह.
2: मुंह काला शर्मिंदा आसी.
0: हाँ है.
2: ती तेरे दर आवा.
0: बहुत खूब.
2: मुजरम थी चा मुजरम करना.
0: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह.
2: तेरा फजल सचावा.
0: हाय हाय.
2: दमड़ी ले करोड़ा बख्शिश काफर खा काफर मुसलमान शान तू साडी वदावा.
0: वाह वाह, क्या कहने.
2: जीवन जीवन गठी गंठड़ी मारा.
0: वाह.
2: इस दी कसम तो सानू जो माबू तुम्हारा.
0: वाह वाह वाह वाह वाह.
2: सब बे अजबी ते गुस्सा की बख्शिश मैनू सचावा.
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब.
2: मगर फरे बहाने बोते सबो वाल छल कूच सबो वाल छल कूड़े.
0: हाय हाय हाय, वाह वाह.
2: कुत्ता साहेब दाता आओ करम दे टूड़े.
0: हाय हाय, वाह वाह वाह वाह.
2: कुत्ता भी बेकार मुकसर खिदमत कम शिकारू.
0: हाँ हाँ.
2: राखी चौकी बाजू खावा. खैर तेरे दरबारू.
0: वाह वाह वाह वाह.
2: डर तेरे ते पले आजिज खैर करम दा हिलिया.
0: वाह जी वाह, क्या कहने.
2: मैं स्वाब जनाब सची थी कदे जवाब ना मिलिया.
0: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह.
2: एक दरबार कहते हैं
0: जी जी,
2: इतनी वो खवातीन वो हजरात है के मुंह में किसी आदमी के नाजायज पैसे से कोई नवाजा मुंह में ना जाए
0: जी।
2: फरमाया बेहतरीन वो शख्स है कि छीने हुए
0: जी जी
2: या किसी हराम कपड़े से अपने जिस्म पर कपड़ा ना लाए। फरमाया वो औरत वो मर्द बहादुर है
0: जी,
2: किसी का छीना हुआ ना खाया ना पिया ना लाया। फरमाया सबसे बहादुर है वो लोग। शुक्रिया,
0: बड़ी बड़ी शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आप आए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगु की, आपने इल्मी गुफ्तगु करते हैं और ये हैं हमारे एम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इनके लिए हम ये पेश करने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई हैं, काफ़ी टाइम हो गया हॉल पे हैं और हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं और जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है, और ये हैं हमारे शहजाद हैं और राजा शहजाद हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत इनकी गुफ्तगु होती है और इनके जो गाने होते हैं होए होए होए होए क्या कहने, इनकी बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है, बड़ी ही प्यारी आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
3: वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और आप आए और बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और बड़े दिनों के बाद हम इंतजार करते रहे, मेरे भाई आएगा और आज जो ना वो भाई आ गया और देर आए दुरुस्त आए।
3: बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत है, आना ही पड़ा जो वादा किया वो निभाना ही पड़ा,
0: आना ही पड़ा। वाह जी वाह, क्या कहने, और ठीक है, ठीक है आपकी?
3: शुक्र अल्लाह का, सब ख्याल करिए, आप ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है। और हमारे लिए और हमारे समीन के लिए क्या लेके आए हैं माशाल्लाह?
3: सर गाने हैं आपके लिए, उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, जो आप सुनना चाहेंगे सुनाएंगे।
0: मैंने कहा क्या क्या क्या कहने, एक गाना सुनाए ना फिलहाल, और आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है, मुझे तो पता है कि बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, जो सुनने वाले हैं वो इंतज़ार में है कि यार ये कौन है, ये कहाँ से आए, कि आवाज़ इतनी खूबसूरत आवाज़ है, तो गाना कौन सा लेके आए जी?
3: चले ठीक है, पहले आपको मैं
0: जी
3: इब्राहिम हक का एक मैशअप है, वो
0: क्या कहने जी, ये है हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है।
3: म्यूजिक आवाज आ रही है
0: जी? आवाज आ रही है, बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही है जी। जी गो हेड।
4: ਬੇਰੇ ਮੱਖਣ ਸਜਾ ਕੇ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੰਘ ਦਿਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਪ ਕਿੱਕ ਮਕਾ ਕੇ ਨੈਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਥਾਰਤੀ ਹਲਾ ਕੇ ਬੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ
0: ਵਾਹ
4: ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਵੇ ਖੜਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਰ ਦੀਆਂ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
4: ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਵੇ ਖੜਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਰ ਦੀਆਂ
0: ਵਾਹ
3: मैंने सोचा गाना ऐसा होना कि सोए हुए भी जाग जाए।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने मैंने, क्या कहने, जबरदस्त कमाल का जबरदस्त कहना जी।
4: बाबा जी ने वेखने लई अनक मंगाइया ने, बाबे ने लिफ्ट करा के ओदे दिन दे तार हला के धरती हला के जरा मैं शर्मा के अज मेला देखण आईया कुड़िया लौर दिया।
0: हाय हाय क्या कहने वाह,
4: अज मेला देखण आईया कुड़िया लौर दिया।
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
4: चक दे जट चढ़े कचहरी बल्ले भाई बल्ले ओदी रंगली मतहरी बल्ले भाई बल्ले जट चढ़े कचहरी बल्ले भाई बल्ले ओदी रंगली मतहरी बल्ले भाई बल्ले ਓਏ ਡੱਟ ਖੜਾਕਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਪੰਜ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਚੰਗੀ ਵਾਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਜਾਇਆ ਆਪੇ ਘਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ

0: बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम छोटी ब्रेक करेंगे। कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
0: राइट, वेलकम बैक योर रेडियो 1.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये है हमारे मोजिज मेहमान और हमारे अपने हमारे अब्दुल कय्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
5: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह,
5: तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज करता हूँ भाई। मुझसे पहले जो भाई जान गीत सुना रहे थे मुझे बहुत ही पसंद आया
0: जी।
5: लेकिन ये दूसरी बात है कि मुझे एक लफ्ज भी पसंद समझ में नहीं है।
0: अच्छा,
5: बहरहाल
0: वो इब्राहिम हक ने गीत गुनगुनाया क्योंकि वो जो गीत ऐसे ही है और वो तेज गीत है। जी जी,
5: बिल्कुल
0: ऐसा
5: ही है। तो इस वक्त जो की नशरिया से माजूर हो रहे हैं
0: जी जी।
5: मैं तमाम
0: जी,
5: कभी कभी जबान
0: नहीं कोई कोई कोई कोई बात नहीं कर सर, कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है।
5: उम्र का तक कर रहा है जी, उम्र का। तो जो इस वक्त रेडियो की नशियात को सुन रहे तमाम को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। मैं जो गीत आपको आपके लिए मैंने चुन के रखा हुआ था वो थोड़ा सा मुश्किल है
0: जी जी।
5: चलो अगले हफ्ते के लिए रहने देते हैं
0: जी जी।
5: ये गजल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मुझसे बिछड़ के वो भी परेशान था बहुत।
0: वाह, क्या कहने।
5: मुझसे बिछड़ के वो भी परेशान था बहुत, जिसकी नजर में काम ये आसान था बहुत।
0: वाह वाह, क्या कहने।
5: शुक्रिया जना। मुझसे बिछड़ के वो भी परेशान था बहुत, जिसकी नजर में काम ये आसान था बहुत। सोचा तो बेखलूस थी सब उसकी कुर्बतें।
0: हाय हाय।
5: शुक्रिया जनाब। सोचा तो बेखलूस थी सब उसकी कुर्बतें, जिसके बगैर घर मेरा वीरान था बहुत।
0: हाय हाय हाय हाय।
5: शुक्रिया जनाब। सोचा तो बेखलूस थी सब उसकी कुर्बतें, जिसके बगैर घर मेरा वीरान था बहुत, और बेखाब सुर्ख आंखों ने सब कुछ बता दिया।
0: हाय हाय हाय हाय।
5: शुक्रिया जनाब। बेखाब सुर्ख आंखों ने सब कुछ बता दिया। कल रात दिल में दर्द का तूफान था बहुत।
0: वाह वाह।
5: शुक्रिया। बेखाब सुर्ख आंखों ने सब कुछ बता दिया। कल रात दिल में दर्द का तूफान था बहुत, और शेर है
0: जी जी।
5: ये क्या किया कि प्यार का इजहार कर दिया।
0: हाय हाय।
5: ये क्या किया
0: कि प्यार का इजहार कर दिया। वाह।
5: मैं अपने इस शिकस्त पे हैरान था बहुत।
0: वाह वाह वाह वाह।
5: ये क्या किया कि प्यार का इजहार कर दिया। मैं अपने इस शिकस्त पे हैरान था बहुत, और वहशत में क्यों किसी के गरीबान को देखता। वहशत में क्यों किसी के गरीबान को देखता। मेरे लिए तो अपना गरीबान था बहुत।
0: वाह वाह वाह।
5: और बेखाब आंखों ने सब कुछ बता दिया। कल रात दिल में दर्द का तूफान था बहुत, और आखिरी शेर है, अब तो कोई तमन्ना ही बाकी नहीं रही।
0: वाह वाह।
5: अब तो कोई तमन्ना ही बाकी नहीं रही। ये शेर आरज़ू भी गुंजान था बहुत।
0: वाह वाह वाह।
5: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत
0: वाह जी वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया मैंने, वाह जी। और हम इंतजार में थे कि गाना भी होगा, और क्या कहने जी, हम इंतजार करेंगे अगले हफ्ते, कोई मसला नहीं।
5: गाने में उस पर जरा मशक कर रहा हूँ अभी, वो थोड़ा सा
0: अच्छा
5: थोड़ा फर्क रह गया ना, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो फर्क निकाल लेंगे।
0: फर्क निकालने के, वाह जी वाह, क्या कहने। वैसे आपकी जरूरत नहीं है फर्क निकालने की, क्योंकि आप एक माहिर हैं और बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज भी है, और गाने भी आपके जो पुराने पुराने गाने वो जो हमने कभी सुने भी नहीं है वो आपके पास है, वो कलेक्शन है आपके बड़े, ओए होए क्या कहने, बड़ी खूबसूरत कलेक्शन है आपके पास, बड़ी खूबसूरत।
5: ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया,
0: वाह।
5: ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया,
0: वाह।
5: ये इंसान के झूठे रवाजों की दुनिया,
0: वाह।
5: ये दुश्मन समाजों के वारों की दुनिया,
0: वाह।
5: ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
0: हाय हाय।
5: ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
0: वाह।
5: अगले हफ्ते के लिए,
0: हाय हाय हाय हाय हाय, कमाल कमाल कमाल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने, वाह जी वाह, मजा आ गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह। और बोल चल रहा, ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं अब्दुल कयूम साहब, जो जिनकी जो आवाज़ है और इनके जो गीत हैं, ओए होए हो, जो इनकी कलेक्शन है, इनकी शायरी है, बेमिसाल, कमाल करते हैं हमेशा ही, और आज भी इन्होंने कमाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका भी अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मोहतरम शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, यस डेफिनेटली सुन रहे रेडियो यहाँ पर, और सुन रहे रेडियो आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हैलिफैक्स में आप प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत अच्छा लगा और आपने इंजॉय करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आए और बाहर आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि उन्होंने हमें दोबारा फ़ोन किया है और ज़रा अफज़ाई करने के लिए, और क्योंकि इनके चाहने वाले बहुत हैं ना, ये बड़ी बात है कि इनके चाहने वाले बहुत हैं माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, कि क्योंकि यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, चौधरी फरियाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
6: बिस्मिल्लाह
0: चौधरी साहब, मुबारक हो हमारे मोहतरम की लाइन ड्रॉप हो चुकी है राय अजर सैन साहब की, तो आपकी माशाल्लाह मिल गई है, और हमारी प्यारी बहना की सितारा साहब है कि उनकी लाइन ड्रॉप हुई है, तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, तो बड़ा ही अच्छा लगा, और जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूँ कम है मेरे भाई जी।
6: शुक्रिया
0: शुक्रिया शुक्रिया
6: आमिर भाई, एक दफा परवेज भाई, एक दफा फिर तुसानी महफिल हाजिर
0: जी जी जी जी,
6: एक दफा फिर तुसानी पूरी महफिल की सलाम और दाब
0: जी,
6: ते डॉक्टर चौधरी मालिक साहब
0: जी,
6: चौधरी मुजफ्फर साहब और मुजफ्फर साहब और वाजिद भाई
0: जी, जी।
6: ना शायरी बल्कि पूरी महफिल के नाम और बिलखसूस नशीन और ना उन्होंने पूरी टीम के नाम,
0: वाह जी वाह। और हमारे मोहतरम में शहजाद भाई हैं, वो प्रोग्राम सुन रहे हैं हुडर्सविल में, उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने गीत गुनगुनाया, आज गुनगुना के गए, और वो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली प्रोग्राम सुन रही है हुडर्सविल से हैं, शहजाद भाई हैं, राजा शहजाद, और बड़ी ही खूबसूरत उनकी आवाज़, बड़ा ही अच्छा लगा, वो भी हमें सलाम पेश करें और आप सब सुनने वालों को सलाम पेश करें जी।
6: मेरा भी उन्होंने सलाम
0: भेजो जी, सलाम पहुँच गए सुनने पे ने
6: माशाल्लाह
0: जी,
6: ते शायर लिखना के विच शरीका ना रोल मैनू,
0: वाह वाह वाह, क्या कहने,
6: विच शरीका ना रोल मैनू, मेरे नाल तू भावे वफा ना कर,
0: वाह
6: किधरे मेर दे विच भी मेर कर दे, एडी दोस्ता तू जोरो जफा ना कर,
0: वाह क्या कहने,
6: पर अपने सारे नबा बेशक,
0: वाह जी
6: वाह, अपने सारे नबा बेशक, कौन आखता फर्ज अदा ना कर,
0: वाह वाह,
6: रूह मिलियां रेन कबीर सागर, मेरे नालों खुद नो जदा ना
0: कर, वाह वाह क्या कहने,
6: अच्छा फिर कई बार समझाया सी यार ताई, कई बार समझाया सी यार ताई, इतना दिल साडा आजार ना कर,
0: वाह वाह,
6: अगे बेकरारी ना यार मुकदी, अपनो और सजना बेकरार ना कर,
0: वाह वाह वाह क्या कहने,
6: तक रहन दे कुछ जहान अंदर, जीना आसान दा तो बेकार ना कर,
0: वाह
6: कोलू आख्या संगिया कबीर सागर, ओए उसनो पुरजा होन इंतजार ना
0: कर, वाह जी वाह क्या कहने, बहुत खूब
6: आख्या मेरे लेखा दे ना ही सितारे चमके,
0: वाह
6: ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕੇ, ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲਾਣ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਅੰਦਰ, ਝਲਕ ਦੀਦਾਰ ਨੀ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਉਮਰ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ,
6: ਵਾਹ। ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀਦਾਰ ਨੀ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਉਮਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲੁੱਟੀ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਰ ਕਰ ਕੀਤੀ ਫਰਿਆਦ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਕਰ ਕਰ ਕੀਤੀ ਫਰਿਆਦ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਰਿਹਾ ਸਬਰ ਨਾ ਦਿਲ ਬੇਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
6: ਜਲ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾਂਗ ਕੋਇਲਾ ਇਸ ਗਮ ਦੀ ਬਲਦੀ ਨਾਰ ਅੰਦਰ, ਕੌਣ ਚੀਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਰਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੱਕਿਆ ਰਹਿਮ ਨਾ ਹੀ ਗਮਖਾਰ ਅੰਦਰ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ।
6: ਲਾਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵਾਂਗ ਜੋਗੀਆਂ ਫਿਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ, ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਖੋਲ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ, ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਖੋਲ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ, ਤੱਕਿਆ ਜੋ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ।
6: ਤੇ ਅਲੀ ਅਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
0: ਜੀ ਜੀ
6: ਪਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਕਿਆ ਖਟਿਆ,
0: ਹਾਏ ਹਾਏ,
6: ਪਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਕਿਆ ਖਟਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਅੱਧ ਮਕਾਈ ਤੁਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਤੀਲੀ,
0: ਹਾਏ ਹਾਏ,
6: ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਤੀਲੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਤੁਸਾਂ,
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ।
6: ਫੁਕਰੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਫੂਕ ਨਾਲ, ਫੂਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ਾ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਫਿਰ ਖੂਬ ਪੜਕਾਈ ਤੁਸਾਂ, ਸਮਾਂ ਬਲੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜਦ ਜਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਲੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜਦ ਜਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਦਲਾਈ
0: ਤੁਸਾਂ,
6: ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਦਿਲੇ ਨੀ ਹਸਰਤ ਮਟਾਈ ਤੁਸਾਂ, ਫਿਰ ਹਸਤੀ ਨੀ ਮਸਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਹਸਤੀ ਨੀ ਮਸਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਦਰ ਦਰ ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਰਸਵਾਈ ਤੁਸਾਂ, ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਫਿਰ ਕਰ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਫਿਰ ਕਰ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈ ਤੁਸਾਂ, ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਮਕਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਅਮਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨੀ ਲੱਜ ਨਬਾਈ ਤੁਸਾਂ।
0: ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ।
6: ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ,
0: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੋਣਾ ਚੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾ ਚੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਅਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਏਬ ਬਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾ ਚੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ,
6: ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿਲਦਾਰ ਆਏ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿਲਦਾਰ ਆਏ, ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਡੀ ਤੂੰ ਗਮਾਂ ਨੀ ਨੇਰੀ ਤਕਸੇ, ਝੁਲਦੇ ਗਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਸਣ, ਉੱਠੀ ਦਰਦਾ ਨੀ ਲਹਿਰ ਉਚੇਰੀ ਤਕਸੇ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ।
6: ਨਜ਼ਰੀ ਆਸਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਹਰਾਨ, ਨਜ਼ਰੀ ਆਸਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਹਰਾਨ, ਅਸਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਫੇਰੀ ਤਕਸੇ, ਮਾਰੀ ਕੂਕਾਂ ਤੂੰ ਰੋਸੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਅਮਜ਼ਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਲਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਕਸੇ।
0: ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ।
6: ਤੁਰਦਾ ਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤਰੋਂ, ਕੋਲੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨਾਨ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਖਾਤਰੀ ਮੈਂ ਬਰਸਾਏ ਅਤਰੋਂ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ।
6: ਕੋਲੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨਾਨ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਖਾਤਰੀ ਮੈਂ ਬਰਸਾਏ ਅਤਰੋਂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ, ਦੂਜਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਕਾਏ ਅਤਰੋਂ, ਕਦਰ ਕੱਖ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਲੀ ਅਮਜ਼ਾ, ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਲਾਏ ਅਤਰੋਂ।
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
6: ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ,
0: ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਛਾਈ ਗਿਓ, ਛਾਈ ਗਿਓ ਜੀ, ਛਾ ਗਏ ਛਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਛਾ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾ, ਆਪ ਆਇਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਵਾਓ, ਯੇ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ, ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ ਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਕਾ ਵੀ, ਔਰ ਹਮੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਿਮੀ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਸਿਤਾਰਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਵੀ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ, ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਇਨਕੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ ਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਭਾਈ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹੀ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।
7: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹੀ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਸਰ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹੈਂ?
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੇ, ਆਪਕੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਗਾਰਡਨ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ।
7: जैसे तो आज आपको पता है क्या सेकंड मुहर्रम है
0: जी जी।
7: और गाना तो मैं नहीं गुनगुना सकता क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर इस वक्त जो है वो मतलब के पूरी का समान है
0: जी जी जी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी
7: तो हमारे जो जिन्होंने इस्लाम को कायम किया नमाज को कायम किया
0: जी
7: और जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान किया
0: जी जी ऐसी
7: तो अगर उनका उनका वक्त है तो आज हम गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए अच्छे नहीं लगते
0: नहीं नहीं नहीं आप अपने करें जो भी आपने करना है आप अपनी जो
7: एक नात मुबारक
0: सुनाता हूं जी पेश करें जी पेश करें जी
7: वो नात है जी के
0: जी
7: सुने कौन
0: माशाल्लाह
7: किस्साए दर

तूने कौन किताए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया।

0: माशाल्लाह
1: है कमी तो बस मेरे चांद की,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: जो तहे मजार चला गया, सुने कौन किस्साए

0: गया। बहुत शुक्रिया
1: सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शाहबाद रखे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और शुक्रान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अल्लाह पाक में शाम को खुश रखे और शादबाद रखे। ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, आपने एहतियात करनी है मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर सब दोस्तों का, और जिन्होंने हमारा आज वक्त हमें दे रहे हैं, टाइम हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा कि फ़ोन करने का, हौसला अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने कोशिश की थी कि मैंने ये आपके लिए पेश करना है थोड़ी देर के बाद, और फिलहाल हमने क्या करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट कॉलर हैं हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं यहाँ पे कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। हेलो जी, विद हेल्प नंबर जी, बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, और देखते हैं कि यहाँ पे कौन है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारा साथ दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू वेरी मच। डन हुई हुआ मेरे ख्याल में सितारा जी होंगे, क्योंकि वो ऐसे मुझे फ़ोन करती हैं विद हेल्प नंबर, तो वो भी उन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी पेश करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और आपका भी, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मैंने एक प्रमिश किया था, और हमारे मोहतरम को, हमारे भाई हैं शुक्रान भाई को, और उनको हमने पेश करना है, ये कलाम पेश करेंगे। उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई के आप आए। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सितारा जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सिमी जी आप भी हमारे दोबारा फ़ोन कर सकती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर हेलो हेलो करता रहूँ। तो वहाँ पर आपने दोबारा फ़ोन करेंगे, मैं ड्रॉप कर दें लाइन को और दोबारा मुझे फ़ोन करेंगे, तो आई विल टेक यू ऑन एयर एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ दे रहे कमरान भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ़ोन करने का, उजा अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे देखता हूँ कि विद हेल्प नंबर मुझे दो तीन दफ़ा आ रही हैं, देखता हूँ कि क्या वजह है कि मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, उनकी आवाज़ मेरे पास, मेरी आवाज़ उनके पास नहीं जा रही है और उनकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही है, इसका क्या मायना है, क्या मतलब है।

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बॉबी शुक्रिया आपका भी, और थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे दोबारा कॉल लूँगा। और बॉबी शुक्रिया जो हमारा साथ दे रहे हैं, बॉबी शुक्रिया इनका भी, और आपने हमें याद कर रहे हैं। और मैंने मसला हल कर दिया कि क्या मसला, कि आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, वो मसला हल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इंतज़ार किया कि आपकी आवाज़ क्यों नहीं यहाँ पे आ रही। एनीवे, यहाँ पे हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, right, time in the studio is 45 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी और ब्रेक के बाद यहाँ पे दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं, और जिन्होंने दो तीन दफ़ा फ़ोन किया विद हेल्प नंबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, जकला खैर। और बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अंडरस्टैंडिंग एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, सबके लिए प्लेटफॉर्म है, और आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड।
2: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Sunrise Music. Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 103.2 FM. और यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ पे दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आप दोबारा फ़ोन कर सकेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्योंकि अभी वो टाइम शो हो रहा है, अजान का शो हो रहा है, और वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आर्ट ब्रेक भी है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इशा की अजान हमने पेश करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जिन्होंने हमारा साथ देने, एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी आई कांट टेक एनीबॉडी ऑन एयरवेव्स एट द मोमेंट, क्योंकि अजान जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप थोड़ा जो होल्ड कर सकेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई डोंट माइंड एनी वे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने दो तीन दफ़ा फ़ोन किया है। अच्छा ताला जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी आवाज़ यहाँ पर कोई मसला हो गया था, और माशाल्लाह हमारे कम्युनिटी के साथ तो मसला मैंने हल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके भी साथ ऐसा ही हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद आपने दोबारा फ़ोन करेंगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज इट विल बी नेक्स्ट वीक नाउ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यू नो व्हाट टू, आई विल टेक यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं ने अजान पेश करनी है यहाँ पे, अभी थोड़ा टाइम है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसके साथ वो चलें। और यहाँ पे आगे भी इंफॉर्मेशन अबाउट सुनर रेडियो, क्योंकि काफ़ी जो नए कॉलर हैं वो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। ऑन योर लिसनिंग टू सुनर रेडियो ऑन 100.6 एफएम, 103.2 एफएम अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर, डीएबी प्लस ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकशायर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्विन, नेल्सन, अकिंगटन, मिल्टन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। एंड वेरी वेरी सून इज गोना बी इन द डर्बी, launching in Derby very very soon. And you can also download the Sunrise Radio app on Apple Play Store, Google Play Store, and www.sunriseradio.fm, www.sunrise.radio, and that is all about on Sunrise Radio information. And yes, aap sun rahe program ko Huddersfield mein, Halifax mein. Bahut bahut shukriya jo Shahzad bhai hain, wo Huddersfield pe wo unhone hame phone kiya tha, mashallah, bahut bahut shukriya unka bhi, thank you very much. And you have called me from Huddersfield, and thank you very much Shahzad bhai, bahut bahut shukriya. Getting a lot of callers and then they're saying thank you to you as well that you're coming to give me valuable time. आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मोहतरम में हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई हैं शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सईद एहसान शाह फ्रॉम लंदन से आपने हमें दोबारा फ़ोन करेंगे ऑन संडे इवनिंग, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमने अजान पेश करनी है, क्योंकि कुछ सेकेंड रह गए तो उसके साथ मैं चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर आई डोंट लाइक टू यू नो डू समथिंग दैट इज़ नॉट यू नो सूटेबल, आई ट्राई टू do everything on time as well, which is to the point. Aur yahan pe abhi time hone wala hai, keep it locked with Sunrise Radio 103.2 FM.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: राइट, वेलकम बैक। बॉबी शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं और सईद एहसान हैं, जो माशाल्लाह एक बहुत बड़े स्टार हैं हमारे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इनका भी, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी हजूर,
3: वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतज़ार किया, वेट किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू वेरी मच। अभी टाइम बहुत ही कम है इस आवर का। गो अहेड विद योर ट्रक, व्हिचएवर यू वांट टू डू फॉर अस।
3: जिंदगी एक सफर।
2: हाय हाय, क्या कहने, ब्यूटीफुल।
3: इट्स अ रियली सैड सॉन्ग, चलो ट्राई कर लेते हैं।
2: जी,
3: सो फॉर द अ लिटिल बिट ऑफ म्यूजिक।
2: डेफिनेटली डेफिनेटली, गो अहेड। वाओ,
3: ओह नॉट दिस वन, सॉरी, इज इट द रॉन्ग वन अगेन? ओह, इट्स द रॉन्ग वन।
2: कोई मसला नहीं, कोई आराम से करें, कोई मसला नहीं, आराम से करें, आराम से।
3: हेलो जी।
2: जी,
3: जिंदगी का सफर।
2: हाय हाय हाय, क्या कहने
3: है ये कैसा सफर।
2: वाह,
3: कोई समझा नहीं,
2: वाओ,
3: कोई जाना नहीं।
2: ब्यूटीफुल
3: जी। ओ किशोर।
2: हाँ हाँ किशोर, की क्या बात है।
3: जिंदगी का सफर है ये क्या।

0: जाएंगे हम रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम
1: वाह

0: है परेशान नजर
1: वाह
0: है गई चार गई कोई सुन जा नहीं
1: वाह
0: कोई जाना नहीं

0: ए खजूर, बाप की गाड़ी समझा गया?
1: टसन क्यों देता है बे खटारे वाले, हम तो मर्सिडीज रखने वाले हैं।
0: मुंह देखा क्या आईने में? अरे हटा सावन की घटा। ए भाऊ समझ जा, सुधर जा, पतली गली से निकल जा, चल चल चल।